0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग. अरे क्या मौसम है बाहर का, मैं आपको बता नहीं सकती. इस ठंड को क्या हो गया, इतनी सीरियस क्यों हो गई है. बाहर इतनी ठंड है, ऐसे लग रहा है कि मुझे, मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कंबल छोड़ने का, पर क्या करें, उठना तो पड़ता है. तो चलिए थोड़ा सा काम और आपका आसान कर देती हूँ. थोड़े से गर्म गर्म कपड़े पहने, कोजी कोजी कीजिए, थोड़ी सी चाय गर्म गर्म बनाइए,

0: कॉफी बनाइए जो आपका दिल करता है। बस आपको इतना ही कहना है कि ये जो गाने हैं ना, ये आपको एकदम से वार्म कर देंगे और कहेंगे अरे हम हैं ना आपके साथ, क्यों किस चीज़ की टेंशन, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एंजॉय कीजिए गाने। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और ये गाने आप सबके लिए हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं 5499124 पर। बहुत ही प्यार के साथ आपकी गुड मॉर्निंग अच्छे से शुरू हो, मैं तो यही चाहती हूँ। तो ये गाने आप सबके लिए।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 5:17 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और इस समय मैं हूँ आपके साथ पूनम। मुझे पता है कि आज थोड़ा सा बारिश भी है, मौसम ठंडा भी है, तो फिर आज थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन भी घर से ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। आपको अम्ब्रेला भी साथ रखना है, जैकेट भी साथ में रखना है और थोड़े से कम्फर्टेबल शूज़ डालने हैं। ये नहीं कि मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट डाल के जाएँ, क्योंकि

0: जब बारिश होती है और जब ऐसा मौसम होता है तो थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा कुछ अलग सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना ही सही रहता है। तो आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल जाएंगे तो उनके लिए भी कुछ ऐसी कंफर्टेबल जैकेट्स दीजिएगा, साथ में उनके लिए टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक करके अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए कहते हैं कि चलो बाहर जा रहे हैं तो बच्चे बाहर खा लेंगे, तो हम तो यही कहते हैं कि देखिए बाहर मौसम थोड़ा सा ख़राब है तो जहाँ पर भी बैठे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे तो वहीं पर ही अपने टिफ़िन खोल के खा सकते हैं। तो कुछ ऐसे एक क्विक क्विक बना दीजिए और फिर जब उनको टाइम मिलेगा तो वो बाहर खा लेंगे। तो एंजॉय कीजिए गानों को और साथ में हम कहेंगे आपको सभी को गुड मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए गानों को।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:27 हो चुके हैं और दोस्तों ये गाना बहुत ही औसम था। जो भी इस समय सुन रहा होगा ना ड्राइव करते हुए, उन्होंने डांस तो ज़रूर किया होगा और साथ में जिन्होंने घर पे सुना होगा

0: मदहोश तो हो ही रहे होंगे, कह रहे होंगे चलो भाई मॉर्निंग अच्छी हो गई, मॉर्निंग में एक सुबह सुबह सबको टेंशन हो रही होगी, अरे जो कल कपड़े धोए थे उसको कहाँ सुखाना है, बारिश का मौसम ना हो जाए, काम पे जाना है। तो कोई बात नहीं, देखिए अब जो हो गया वो हो गया, मौसम को तो नहीं बदल सकते, मौसम को रोक नहीं सकते, तो जो भी थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करनी है, जिस सब लेडीज़ को पता है, जेंट्स को पता है कि कहाँ जितने कपड़े धोए हैं वो कहाँ पर सेट होंगे, तो ये सब आप कर सकते हो ईजिली। थोड़ा सा टेंशन मत लो, मॉर्निंग शुरू हुई है, हैप्पी मूड के साथ शुरू कीजिए। और अभी थोड़े से दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं। तो ललिता जीतन जी जुड़ी हुई हैं और अपनी एक दोस्त सरोजी वीना कुमारी, गीता ग्यंती, ललिता जीतन जी और संजय विजय कुमार देवी चरण के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और सबको कह रही हैं गुड मॉर्निंग। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और अपने पूरे स्टाफ के साथ मस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं गाना जो भी चलाया था ना बस बस मस्त था, क्या बात है, थैंक यू सो मच। सूरज शर्मा साजदा जी साथ दे रहे हैं और अपने परिवार के लिए भी बस बेस्ट विशेज मांग रहे हैं और सभी के लिए गुड विशेज मांग रहे हैं। कविता जी साथ दे रही हैं, रिया अंशी केशनी, ब्रदर जीतन, सिस्टर सुनीता, प्रतिमा के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, बिल्कुल चलाएंगे। अब्दुल सायरा वानो जी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं मॉर्निंग के इस प्रोग्राम को। जयशन जी साथ दे रहे हैं और अपने पूरे स्टाफ के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में प्रोग्राम इन्जॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। दीपक जी साथ दे रहे हैं और विदू जी के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। ध्यान श्वेता रवीश प्रिशा लुवेशा आबादू फैमिली साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। भाई जो मॉर्निंग मॉर्निंग में उठ चुके हैं उनके लिए तो हम यही कहेंगे गुड मॉर्निंग, और जो अभी तक नहीं उठे हैं उनको बस थोड़ा सा ठंडा पानी दिखा दो, मज़ा आ जाएगा, इन्जॉय करेंगे और वैसे ही आँख खुल जाएगी।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: ये कश्मीर नहीं है, ये मॉरिशियस है, ये भी जन्नत से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत देश हमारा, जिसमें जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग जब मॉर्निंग में एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं, अगर गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल होती है। मैं कहती हूँ वाओ, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल मूड बन जाता है। पर इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी घर से बाहर जाएँ, अपने साथ अपनी मुस्कान को हमेशा साथ लेके जाएँ। और इस समय हमें कोई भी बुज़ुर्ग सुन रहा है, जो हमारे ओल्ड लिसनर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको हम यही कहेंगे, आज देखिए थोड़े से गर्म कपड़े पहनिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, कुछ गर्म गर्म पीजिएगा। उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई और बना के पिलाए या कुछ, खुद जाइए, थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए, चाय बनाइए, हल्का सा कुछ ब्रेड खा लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको घर में दिख रहा है उसको खाइए। ये नहीं कि 10 बजे 11 बजे तक आप भूखे रहें और वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये मॉर्निंग की तो यही शुरुआत होती है ना, जब आप हल्का फुल्का खा लेते हैं। मोहब्बत से हम लोग आपको इसीलिए बस क्या कि आ जाते हैं, और गुड मॉर्निंग भी इसीलिए कहते हैं कि आपकी मॉर्निंग हो सुपर इंजॉयबल। तो चलिए गानों के साथ थोड़ी देर में हम जुड़ पाएंगे आपके होरोस्कोप के साथ। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:46 हो चुके हैं दोस्तों। सुबह की शुरुआत अच्छी एनर्जी और थोड़ी सी केयर के साथ करते हैं। अपने काम में जोश रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे जरूरी खुद को मत भूलिए। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले एरीज मेष राशि। आज सुबह से एनर्जी अच्छी बनी रहेगी। जिस काम को टाल रहे थे आज उसे शुरू कर दीजिए। तेज रफ्तार में भी थोड़ा आराम जरूरी रखिए। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 5।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज आपकी एनर्जी बहुत ही कमाल की रहने वाली है। किसी अपने की सलाह आपके काम आ सकती है। घर से निकलते समय कुछ अच्छा खाकर निकलेगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपका चेयरफुल अंदाज माहौल खुशनुमा रखेगा। बातचीत में कोई काम आसानी कर सकती है। बिजी हो तो अपना भी ख्याल रखिए। थोड़ा सा कुछ आराम से खाते पीते रहिए। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए और साथ में एक दूसरे का हाल पूछते रहिएगा। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज अपनों से मिली अच्छी बात वाली एनर्जी और सलाह ज़रूर मानिएगा। काम में मन लगाकर अपनी एनर्जी को डालिएगा। किसी की केयर ज़रूर कीजिएगा लेकिन खुद को भी समय दीजिए। जो काम आज आप करने जा रहे हैं कोई हो सकता है बहुत ही

0: ऑफिशियली ऐसा काम हो जो आपको फोकस करना है, उस पर पूरा कंसंट्रेट कीजिएगा. लकी कलर बनेगा आपका व्हाइट. लकी नंबर है 2.
1: लियो सिंह राशि,
0: आज आपकी बात को हर कोई नोटिस करेगा. आपकी काबिलियत देखने का मौका सबको मिलने वाला है. आप बहुत ही मोटिवेट करते हैं सभी को, और आज आपको भी कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर देगा. लकी कलर बनेगा आपका ऑरेंज. लकी नंबर है 1.
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज एक ही काम आप करते चले जाएंगे. सुबह से ही आपकी प्लानिंग बहुत ही फाइन रहने वाली है. हो सकता है कि आप आज अपनी प्लानिंग के वजह से पूरे वीक को और पूरे मंथ को इजी कर पाएं. तो हम ये इतना ही कहेंगे, आपकी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी रहे और आपकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है. तो आपका लकी कलर बनेगा ब्लू. लकी नंबर है 4.
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज आपको जिसकी भी कंपनी का साथ मिलने वाला है, या कोई किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप किसी का इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपको वहाँ सक्सेस मिलने वाली है. क्योंकि आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे आपको आज ज़रूर मिलेगी. मिलजुल कर आप काम करने वाले हैं, और हो सकता है आपकी ये छोटी सा एफर्ट या छोटी सी कोशिश आपको बहुत आगे लेके जाए. लकी कलर बनेगा पिंक. लकी नंबर है 7.
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है. आज आप अपने लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं. बहुत टाइम से बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, हो सकता है उस चैलेंज को पूरा करने का टाइम बिल्कुल आ गया है. आप अपने लक्ष्य को पूरा आज करेंगे, हो सकता है दिस वीक करें. खुद पर बिल्कुल भरोसा रखिए, फोकस रहिए. बस प्रेशर अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है. जो काम अपने आप हो रहे हैं अपने आप चल रहे हैं, तो इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना है. बट ज़रूर फोकस और नोटिस करते रहना है अपने काम को. लकी कलर बनेगा पर्पल. लकी नंबर है 8.
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज आप कुछ शायद नया करने वाले हैं. जोश आपका बिल्कुल चरम पे है, और नई जगह नया आइडिया आपको आने वाला है. कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके साथ दूसरे लोग भी जुड़ने वाले हैं, और हो सकता है यही दूसरों का जुड़ाव आपके काम को आसान करने वाला है. लकी कलर है ऑरेंज. लकी नंबर है 9.
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपने जितनी प्रोग्रेस की है, उसकी जो मेहनत है, उसको सब नोटिस करने वाले हैं. अपने लक्ष्य को आपने पूरा किया है, हो सकता है आज आप उनके साथ सेलिब्रेट करें, या हो सकता है बिल्कुल एंड पर आपका काम अटका हुआ है वो आज पूरा होने वाला है. अच्छा खाइएगा, स्माइल रखिएगा, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, जिस काम को आप करना चाह रहे थे, शायद आज वो पूरा हो सकता है. लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन. लकी नंबर है 6.
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपका कोई नया आइडिया आपके काम आ सकता है, आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपका बिजनेस बना सकता है. हो सकता है कोई आपके जो मालिक हैं या जो आपके बॉसेस हैं, उनको आपका आइडिया पसंद आ जाए, तो आप उनकी मदद कीजिए और उनकी मदद लीजिए. हो सकता है कोई आपके साथ बिल्कुल जुड़ना चाह के आपके साथ कुछ काम करना चाहता है. लकी कलर बनेगा ब्लू. लकी नंबर है 5.
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज मन खुश रहेगा और आपकी एनर्जी भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है. आपके मनपसंद का खाना आज आपको मिलने वाला है, मनपसंद की आज आपसे कोई स्पेशल बात कहने वाला है. किसी बात को लेके आप बहुत टाइम से टेंशन में थे, वो भी पूरा होने वाला है. तो लकी कलर बनेगा आपका पिंक. लकी नंबर है 3. तो दोस्तों, एनर्जी अपनी अच्छी रखिए, एक दूसरे के साथ अच्छी वाइब्स बांटें, और हमेशा खुश रहें. मैं थी आपके साथ पूनम.
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Time check, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. पूजा से. पूजा, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी को मेरा नमस्कार. मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है. आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरैक्टिव मैप ऑनलाइन जारी किया है, जिसकी मदद से सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तट तक पहुंचने वाले रास्तों की पहचान की जा सकती है. फिलहाल इस मैप में 4 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, ला पुनेज, ला मिवा, तमारे और फ्लाक. बाद में इस मैप को टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा. सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बियानुरू पेयालावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण. गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पेयालावाल को मॉरिशस के महान धर्म सेवक के रूप में भी माना जाता है. और आज उनकी तीर्थ यात्रा कल शुरू हुई और आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है. ये मात्र पैदल तय किया जाने वाला रास्ता नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है. विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले 2 दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमरीकी युद्धपोत के 2 बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है. और अब मौसम का हाल. मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू है. मस्कैरिन के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे, दिन के दौरान हल्की वर्षा होगी, खासकर देश के पूर्व, दक्षिण और

0: ऊंचाइयों पर। रात को भी बादल छाए रहेंगे। सेंट्रल प्लाटू तथा हवाई ढलानों पर रहकर वर्षा होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से, मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 17 से 22, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. गणपति बप्पा की सभी के घरों में गणपति बप्पा आ चुके हैं और ये एक तो गानों के साथ हमारी तरफ से आ जाते हैं और बाकी सब अपनी खुशी से अपने घर में बप्पा को लेकर आते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं. तो हम तो यही कहेंगे कि आपकी एनर्जी ऐसे ही बनी रहे, ऐसी स्ट्रांग बनी रहे, हमेशा खुश रहें अपने परिवार के साथ. चलिए जी, दो तीन प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं, वरना सारों ने कहना है हमारे मैसेजेस कहाँ गए. नहीं जी, बिल्कुल जो ले सकते हैं बिल्कुल ले रहे हैं. रेखा जी साथ दे रही हैं और कह रही हैं हवा ठंडी इतनी चल रही है कि किचन से अपने कपड़ों को झूमते और नाचते देख रही हूँ और दिल कर रहा है इनके साथ मैं भी थोड़ा सा झूम लूँ. तो किसने मना किया, जाओ थोड़ा सा झूम लो, हम भी यहाँ पर झूम रहे हैं. इंद्रा, रेशमा, विमल, अंजू, कृष्णा, केशव, नील साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं. साथ में हमारी रीना पंपलीमुस से हैं और अपनी सिस्टर मदर इन लॉ सीता केदन जी को बर्थडे विशेस कर रही हैं. मनीषा, सुधीर, आहाना, श्रियान, गीता, श्रिया, शिवाजी, रीना एंड ऑल रिलेटिव सभी विश कर रहे हैं उनको. सोनम बोला साथ दे रही हैं और अश्विनी, अविशा, मम सिस्टर, ब्रदर सभी को मिस कर रही हैं. आई डोंट नो आप कहाँ पर हैं, पर जिस काम के लिए गई हैं जहाँ भी हैं मिस मत कीजिए. बस अपने आप थोड़ा सा खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए ज़िंदगी को. सब अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं तो इसलिए कहते हैं कि मिस मत कीजिए, बट उनका साथ देते रहिए. फ़ोन कीजिए और मॉर्निंग अच्छी बनाएं, खूबसूरत बनाएं. गुलाब जग्गा जी साथ दे रहे हैं और उनको मज़ा आ रहा है इस प्रोग्राम को सुनते हुए. थैंक यू सर. यशिता सुकुन जी का बर्थडे था और दादा दादी, चाचा चाची थोड़ा सा लेट हो गए, बट वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमारी भी उम्र तुमको लग जाए, हमेशा खुश रहो. क्या बात है, थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए. लेट हैं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं. रुपेश श्याम रियांश के लिए बोल रहे हैं कि वो दो दिन के हो गए हैं, दो दिन पहले वो एक साल के हो गए हैं. उनको बहुत सारी बेस्ट विशेज पूरे परिवार की तरफ से और बहुत ही खुशियों भरा समय रहा और हम साथ चाहते हैं कि प्लीज़ आप उनके लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाएं. तो चलिए, ऐसे कैसे हो सकता है ना चलाएं. ये सभी उनके लिए जिनका आज बर्थडे है, जिनका कल बर्थडे रहा और जिनका कल आने वाला है बर्थडे, आप सबके लिए.

0: है बजाना रहे, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं।
1: थोड़ी देर में सुन पाएंगे आप विस्तार से समाचार।
0: दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागे, किस महदम में यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से, बिहार नहीं हम।

0: सुबह के 6:30 बजे हैं। नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस में समुद्र तटों और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम। लापुनेज तमाग में कल स्थल का दौरा किया गया। आवास एवं भूमि मंत्री शाकिल मोहम्मद ने बताया कि फिलहाल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिमी और फ्लैक इलाके के लिए उपलब्ध है, जिससे बाद में टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। आज 9 सितंबर को बियन रुपया लावाल की 162वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हर वर्ष की तरह कल भी बड़ी संख्या में मॉरिशसवासी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने और प्रार्थना के लिए सैकड़ों स्थित उनके मकबरे तक तीर्थ यात्रा की। SSON अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगियों के लिए एक विशेष वार्ड कायम। ये सुविधा रोगियों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार देखभाल और इलाज उपलब्ध कराएगी। विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 2 दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमरीकी युद्धपोत को 2 बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया। मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरैक्टिव मैप ऑनलाइन जारी किया है, जिसकी मदद से सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तट तक पहुंचने वाले रास्तों की पहचान की जा सकती है। फिलहाल इस मैप में 4 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, लापुनेज, लामीवा, तमारे और फ्लैक। बाद में इस मैप को टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। शैली नियबन की रिपोर्ट पर सुनते हैं आस्था गोविंद चितामन को।
1: व्यवहारिक रूप से ये मंच आम लोगों को उन सभी समुद्र तटीय पहुंच मार्गों को देखने की सुविधा देता है जिन्हें मंत्रालय द्वारा दर्ज किया गया है। ये पहली मैपिंग ऐसे समय में सामने आई है जब पिछले कई महीनों से सरकार के प्रयासों में समुद्र तटों तक लोगों की पहुंच का मुद्दा प्रमुखता से शामिल रहा है। मंत्रालय ने सार्वजनिक रास्तों की बेहतर पहचान के लिए साइन बोर्ड लगाने और समुद्र तट तक पहुंच में बाधा डालने वाली या उसे मुश्किल बनाने वाली रुकावटों को हटाने की भी घोषणा की थी। जमीनी स्तर पर अब कुछ जगहों पर समुद्र तट तक जाने वाले रास्तों को दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जबकि कुछ अन्य साइन बोर्ड समुद्र तट से मुख्य सड़क तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे और विकसित किया जाएगा। मंत्रालय के कार्टोग्राफी सेक्शन के अधिकारियों द्वारा आंकड़ों को संकलित और सत्यापित किए जाने से बाद

0: में इसमें अन्य सेक्टरों को भी जोड़ा जाएगा। ये टूल अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं के काम को भी आसान बनाने में मदद करेगा, खासकर जब समुद्री तटीय क्षेत्र में किसी हस्तक्षेप या आपात कार्रवाई की आवश्यकता हो तो नेशनल कोस्ट गार्ड, पुलिस और चिकित्सा सेवाओं के लिए ये उपयोगी साबित होगा। और अगर किसी समुद्र तट तक जाने वाला रास्ता किसी गेट, कंटेनर या किसी अन्य संरचना के कारण अवरुद्ध है तो मंत्रालय ने आम लोगों से उसकी तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने और मामले की जानकारी मंत्रालय या पुलिस के लेंस डिवीजन को देने की अपील की है।
1: और इसी सिलसिले में ला प्रुनेज तमारा में एक दौरे के तहत आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने समुद्र तट तक सार्वजनिक पहुंच और वहां लगाए गए दिशा निर्देश संकेतों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिमी और फ्लैक इलाके के लिए उपलब्ध है, इसे धीरे धीरे टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं उनसे बात की माधवी जगन्नाथ ने।
2: Si vous cliquez, vous pouvez avoir une photo qui est ouverte pour montrer où, qui grandeur, qui largeur, qui longueur, et une photo pour montrer où côté était exactement pour qui public capable d'identifier mon accès. À ce stade, c'est la côte ouest qui fin et dans l'eau ça m'a plat et dans flac aussi et dans l'eau ça m'a plat. Par le bon officier pour continuer update li.
1: खबरों को हम जारी रखते हैं। सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बियान यूरोपे अलावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण है। गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पे अलावाल की मॉरिशस के महान धर्म सेवक के रूप में भी जाना जाता है। बियान यूरोपे अलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा कल शुरू हुई, जो मात्र पैदल तय किया जाने वाला रास्ता नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। आज पेलावाल की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। गीता सुना रायन की रिपोर्ट।
3: मोमबत्तियां, फूल और एक ही व्यक्ति की ओर उठे श्रद्धा से भरे चेहरे, बियान्यूरो पेलावाल सेंट क्वा के उनके मकबरे में यही देखने को मिल रहा है। हर वर्ष हजारों लोग सेंट क्वा तक पैदल तीर्थ यात्रा करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं और अपने विश्वास को फिर से मजबूत करते हैं। पेशे से डॉक्टर रहे पेलावाल ने कुछ वर्षों बाद धार्मिक जीवन का मार्ग चुना और वे पादरी बने। साल 1841 में वे एक मिशन के साथ मॉरिशस पहुंचे, हाल ही में स्वतंत्र हुए गुलामों का साथ देने और उनकी मदद करने के लिए। 23 वर्षों तक उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे गरीब और वंचित लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया और मॉरिशस में धर्म प्रचारक के रूप में पहचान बनाई। 9 सितंबर 1864 को उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव और विरासत समाप्त नहीं हुई। हर साल ये तीर्थ यात्रा पीढ़ियों की सीमाओं को पार करती हैं और मॉरिशस वासियों को एक ही संदेश के इर्द गिर्द एकजुट करती हैं, एकजुटता, आस्था और आशा।
1: एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज के लिए बियान्यूरो पेलावाल के मॉरिशस आगमन की 150वीं वर्षगांठ और उनकी मृत्यु की 162वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोर्ट लुइस के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जुरोन ने अपने प्रवचन में ये बात कही। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, सड़कों और स्कूलों में बढ़ती हिंसा, साइबर उत्पीड़न तथा सोशल मीडिया पर नस्लवादी टिप्पणियों को लेकर मोंसेयर जुरोन ने कहा कि वे इन घटनाओं से बेहद चिंतित और गहराई से व्यथित हैं। मॉरिशस मतलब पोर्ट लुइस के बिशप ने युवाओं में नशीली दवाओं के बढ़ते प्रकोप की भी कड़ी निंदा की। उनको सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला ने।
4: En août 2026, mon gars Lazois et mon bon frère exerce les autres l'église et aussi mon frère exerce différentes religions. Quand nous avons l'occasion, écoute ce qui peut passer dans nos pays aujourd'hui en ce qui concerne la drogue. Nous partageons comment la religion peut sensibiliser les gens et réhabiliter les gens qui tombent dans l'addiction. À partir de sa première réunion, là, une comité nous joint pour discerner qui est une action qui nous peut capable vivre ensemble.
1: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित लोगों की देखभाल की दिशा में एक नई पहल कई वर्षों की कोशिश और

0: आपसी सहयोग के बाद SSON अस्पताल में एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जागरूकता दिवस पर शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य रोगियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार बेहतर इलाज देना और उनकी जीवन को आसान बनाना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी संगठन ने इसका स्वागत किया सरकारी अस्पतालों में और अधिक विशेष उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। अजमल मोइटोब की रिपोर्ट पर करुणा लालू को सुनते हैं।
1: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जूझ रहे मरीजों की देखभाल के लिए एक नया चरण, मरीजों के लिए समर्पित नया वार्ड, कई वर्षों से चल रहे प्रयासों और विभिन्न पक्षों के सहयोग का नतीजा है। इसका मकसद मरीजों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। सुदेश कुमार पाठू कहते हैं,
2: Je canalise ces enfants-là vers nous, l'association. Et à partir de ça, nous prenons le suivi.
1: उत्तर क्षेत्र से परे स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने दक्षिणी क्षेत्र में भी इसी तरह की सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य दक्षिण के मरीजों को खास चिकित्सा सेवाएं उनके घर के करीब उपलब्ध कराना है। मंत्री अनिल बिचू ने कहा,
3: pour garder quelques jours ou quelques semaines dans l'hôpital, il y a un problème pour mes parents. Alors nous pensons dans le site, soit à Rosebel ou à Suyac, nous visons faire un autre département, un petit ward là-bas.
1: स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि दो नई एंजियोग्राफी मशीनें फ्लैक और जीटू अस्पतालों के लिए जल्द ही खरीदी जाएंगी। अस्पतालों में मौजूदा कई मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें लगातार मरम्मत की आवश्यकता है।
3: L'hôpital civil, un de l'hôpital plus important des pays de la capitale, en Diop et en Panne là-bas, nous avons fait tous nos démarches. Cette semaine-là, nous sommes capables de reparler. Et quand nous reparlons, nous espérons qu'ils travaillent un peu. Mais entre-temps, nous avons déjà fini de commencer la procédure pour prendre des angiomachines, un à flac et un à tout.
1: वहीं सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। ये असेसमेंट पैनल के कामकाज पर भी गौर करेगी।
4: La réforme de disability benefits, l'IPU, vise pour qu'il non seulement get l'élément médical de quelqu'un qui a un quelconque disability, mais il aussi vise pour get l'élément fonctionnel, au sens le medical guideline pour intégrer et modernise et réactualise un critère médical. Et que là, nous pouvons aussi évaluer Ben Zibon qui basise le 60%, mais en bas 60%.
1: सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के स्तर पर भी कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार संविधान में दिव्यांगता को भेदभाव से सुरक्षा के आधारों में शामिल करने के अपने वादे पर कायम है।
0: विदेश में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले दो दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमेरिकी युद्धपोत को दो बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमेरिकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है। सेंटकॉम के अनुसार ओमान की खाड़ी में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को से जुड़े 4 ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान की खाड़ी तट से दूर स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल द्वीप के पास एक अन्य टैंकर को भी निशाना बनाया गया। इसके जवाब में तेहरान ने जोर्डान स्थित एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी। हालांकि जोर्डान ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान द्वारा दागी गई 20 मिसाइलों में से 18 को मार गिराया है। और अब मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू है। मस्कैरिन के दक्षिण पश्चिम में पाई जा रही एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान

सुबह के समय तथा दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे, हल्की वर्षा होगी देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर। रात को भी बादल छाए रहेंगे। सेंट्रल प्लेटू तथा हवाई ढलानों पर वर्षा होने का अनुमान है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से, मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 17 से 22, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:11 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा।

0: देश विदेश तथा मौसम के इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम। लापुनेस तमाहे में कल स्थल का दौरा किया गया। आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने बताया कि फिलहाल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिमी और फ्लैक इलाके के लिए उपलब्ध है, जिसे बाद में टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। आज 9 सितंबर को ब्यान यूरोपीय लावाल की 162वीं पुण्य तिथि मनाई जा रही है। हर वर्ष की तरह कल भी बड़ी संख्या में मॉरिशसवासी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने और प्रार्थना के लिए सैंखवा स्थित उनके मकबरे तक तीर्थ यात्रा की। एसएसआईएन अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगियों के लिए एक विशेष वार्ड कायम। ये सुविधा मरीजों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार देखभाल और इलाज उपलब्ध कराएगी। विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले दो दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमरीकी युद्धपोत को दो बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है। बजकर 46 मिनट हुए हैं। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। गांधी रोध्य बेल्टिया में, गांधी रोध्य बेल्टिया में 83 साल की 83 years old श्रीमती सुशील ललित, श्रीमती सुशील ललित जिन्हें लोग सुभावती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी। आज दिन के डेढ़ बजे इनके पोते गिरीश गुहिला के मकान गांधी रोड बेल्टिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 1:30 PM। कंफुखो में 92 साल की 92 years old श्रीमती विद्यावती मोघा, श्रीमती विद्यावती मंगरा पैदाशी नाम बनुमाली और जिन्हें लोग मिस लुलु नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी। आज दिन के दो बजे इनके मकान कौफुखो से उठाकर कौफुखो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बॉम्बे स्ट्रीट पे चिराफरी में शिवाला के पास 54 साल की 54 years old श्रीमती दामयंती रघुबर पैदाशी नाम सतन और जिन्हें लोग रीता नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी। आज दिन के डेढ़ बजे इनके बेटे अनिकेत रघुबर के मकान बॉम्बे

0: स्ट्रीट पे चिराफ़े से उठाकर मोमास्काल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड ला फ्लोरा में 93 साल के 93 इयर्स ओल्ड श्री रूप नारायण मोघा जिन्हें लोग ललन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबोआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट नून। रिवालों रोड क्रेव क्यूर में 81 साल की श्रीमती धनवंती बलडाओ जिन्हें लोग कलावती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम साढ़े तीन बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान रिवालों रोड खैवकुया से उठाकर खैवकुया ही की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड श्वाजी बेजुकाप में 89 साल की श्रीमती दयावंती हरी पैदाशी नाम करदारी और जिन्हें लोग हीरा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे पापुल हरी के मकान रॉयल रोड श्वाजी बेजुकाप से उठाकर सैमौते बेजुकाप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोसेलमान ओसाई फोंजुसाक में 74 साल के 74 इयर्स ओल्ड श्री जॉन पोल इल्बेयर जिन्हें लोग जॉन पोल नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी सविता इल्बेयर के मकान मोसेलमान उसाई फोंजुसाक से उठाकर दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। बॉम्बे रोड प्रोविडेंस का चेमिलिटेयर में 72 साल की 72 इयर्स ओल्ड श्रीमती वीरामा चिदम्बरम पैदाशी नाम कुंजमाले और जिन्हें लोग मेनिदा नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे इनके बेटे कैंडन चिदम्बरम के मकान बॉम्बे रोड प्रोविडेंस का चेमिलिते ऐसे उठाकर मिजिन का उदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। रॉयल रोड न्यूग्रोव में 79 साल की 79 इयर्स ओल्ड श्री उजागिर सिंह सकी सिंह जिन्हें लोग विष्णु नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले DWC में इंस्पेक्टर का काम करते थे। इनकी अर्थी आज सुबह साढ़े दस बजे इनकी बहन हरावंती सकी सिंह के मकान रॉयल रोड न्यूग्रोव से उठाकर प्लेन मायाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। और गांधी रोड बनमेया में 76 साल के 76 इयर्स ओल्ड श्री अमृतलाल बिकाऊ जिन्हें लोग नारायण नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे रामनाथ सिंह बिकाऊ के मकान गांधी रोड बनमेया से उठाकर लावाचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं आज किसका बर्थडे है? आज है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का। एक्शन हो या कॉमेडी, अक्षय ने हर अंदाज में हमें खूब एंटरटेन किया है। तो हम सब उनको RM2 रेडियो मस्ती की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बर्थडे विशेस देते हैं। हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार। अभी मेरे को जाने की इजाजत दीजिए, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा वेदिता का।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Starting with a bang bang, good morning. सुबह के 7:05 हुए हैं, Wednesday 9 of September. Hello, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फर्स्ट क्लास आ गई हूँ आपका साथ देने के लिए आप ही के शो में. और मॉर्निंग बीट में यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आज आपके दिल में जो बात है वो जबान तक आ जाए, यानी कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं हमसे, आपके मैसेजेस आर मोस्ट वेलकम ऑन 549 and 1294. गेम्स होंगे आपके लिए, गिफ्ट्स होंगे, एंड ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स अपडेट भी होगा थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं. तो साथ देते रहिए. व्हाटएवर यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: चीज़ बड़ी

0: FM 2
1: Radio Musty.
2: Soso, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
3: Être bien sage.
2: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Kiki Fanville.
3: Ah ben, faudra être très sage alors.
4: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près d'où vibrer que tu as envie avec App Canal Plus inclus dans ton abonnement.
5: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
4: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport Channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
6: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
7: Mon Dieu!
8: Me prépare un top manger pour toi là.
7: Mon Dieu!
8: Un bon panier macni.
7: Mon Dieu!
8: Désistément avec Malay Panier, mon Dieu même ça. Mon Dieu, lien Malay Panier 100% naturel, li fondant et pénadisé l'azouté.
9: Mon Dieu panier, mon Dieu plaisir.
0: RM2
1: Radio Musty.

यहाँ पर आपके लिए हम दो टिकट्स लेकर आए हैं. यस, दो टिकट्स फॉर शेख ज़वाता. एंड चलिए, यहाँ पर अगर आप मैजिक थ्रिल्स लॉफ्टर और स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं अपने पूरी फैमिली के साथ, तो दिस इज द राइट टाइम टू प्ले विद अस एंड विन टू टिकट्स. तो चलिए, यहाँ पर शेख ज़वाता जो है आपको मुझे बताना है कि एट व्हाट टाइम डज द फर्स्ट वीकेंड परफॉर्मेंस बिगिन. एट व्हाट टाइम डज द फर्स्ट वीकेंड परफॉर्मेंस बिगिन. इज इट 1:30 PM, 2:30 PM और 3:30 PM. आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, 1:30 PM, 2:30 PM या 3:30 PM. जल्दी से अपने जवाब दीजिए ऑन 5499-1294.

0: रेडियो मस्ती।
1: ओके तो यहाँ पर हमने आपसे एक सवाल पूछा था और आपके लिए दो टिकट्स हैं फॉर दी ज़बाटा सर्कस। और हमारा सवाल था एट व्हाट टाइम डज द फर्स्ट वीकेंड परफॉर्मेंस बिगिन, इज इट 1:30 PM 2:30 PM और 3:30 PM एंड द राइट आंसर इज 2:30 PM। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने खेला है लेकिन सही जवाब देकर विनर बने हैं। यह है चंदन बुदू फ्रॉम वाकवा, कंग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही जवाब दिया। एंड यू हैव जस्ट गॉट टू टिकट्स टू सी एक्स ज़बाता। गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स, लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली। सो यू कैन कैच सी एक्स ज़बाता एट बागातेल विच विद शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एट 6 PM and Saturday and Sunday at 2:30 PM and 5:30 PM. For bookings and information, you can call on 5250-9413. CX Zavata, don't miss the magical big show. All right, guys, we continue with some great music right here on a Radio Masti. Don't forget, agar kisi ka birthday hai, unka phone number aur unka naam hum tak zarur bheje on 5499-1294.
2: RM2, Radio Masti.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. यहाँ पर हमारा जो शो चल रहा है, डेफिनेटली आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मस्ती. आज किसका बर्थडे है चलिए जानते हैं. हेलो. ओहो, यहाँ पे तो लगता है कि हमारी आवाज़ सुनते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया. चलो देखते हैं कौन है हमारे साथ. हम हमेशा कहते हैं कि जब आप किसी को सरप्राइज़ करना चाहते हो, ये सरप्राइज़ होता है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से, एंड उनको एक वाउचर भी दिया जाता है. सो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से या तो फिर कोई भी आपके

0: फ्रेंड सर्कल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। हाय करुणा।
1: yes.
0: करुणा जी, आपने फ़ोन क्यों काट दिया?
1: पता नहीं,
0: डर गई क्या? डरते क्यों हो, मैं थोड़ी ना आपको खा जाऊंगी। और वैसे हम तो फोन पे बात कर रहे हैं, आपको पता है कौन बात करी आपके साथ?
1: विदिता।
0: पता चल गया। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग।
2: थैंक यू।
0: करुणा जी, रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर आपको मिल रहा है, ये सरप्राइज आपको लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से किया गया। एंड थैंक यू कि आपने फ़ोन उठा लिया एंड हमें मौका दिया कि हम आपके बर्थडे पे आपको विश कर सके और आपको ये गिफ्ट दे सके। वैसे नहीं, सच में आपने फ़ोन क्यों काटा? सीरियसली फ़ोन क्यों काटा? डर गई? डर गई? अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, डराने तो मैं आई थी लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप जब फोन काट दिया ना तो मैं डर गई थी। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं, मॉर्निंग में आप हमें सुनते हैं, पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो आपको लुलु हाइपर मार्केट की तरफ वाउचर मिल रहा है जो आपको आज नहीं तो कल कलेक्ट करना पड़ेगा अपने आईडी कार्ड के साथ। यू हैव टू कम बिटवीन 9 AM till 3 PM। अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल आ सकते हैं, लेकिन आना जरूर है। इसी के साथ नेक्स्ट गाना भी मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगी। करुणा जी, एक बार फिर आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे बहुत सारे लोगों ने आपको विश किया है, एक बहुत लंबी लिस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट आई थी, और सब ने आपको बहुत प्यार भेजा है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भेजा है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो दिन है आपके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत खास हो, और आप इन्जॉय करें, रेडियो मस्ती सुनते रहे, हमारे गाने प्यार से सुनते रहे। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर डे। बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय।
3: Morning Beat, a good beat for your morning show. James.
4: RM2, Radio Musty in the mix.

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: और यस, घड़ी दिखा रही है, समय हो गया है हमारे दोस्त अरविंद से मिलने का, तो चलें।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: एंड यस, इट्स टाइम टू वेलकम अरविंद। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चैंपियंस लीग का लीग स्टेज शुरू हुआ। प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला दोनों की जीत हुई। रियल मैड्रिड भी अपना मैच जीत पाया। पोर्टो 0 मैनचेस्टर सिटी 2। दोनों गोल सेकेंड हाफ में अर्लिंग अलोन ने स्कोर किया। मैनचेस्टर सिटी की टीम में युवा खिलाड़ी अयूब बुआदी का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा। केवल 18 साल का है पर मिडफील्ड का माइस्ट्रो दिखता है। क्लब ब्रुज 2 एस्टन विला 3। मैकगिन, बुएंजिया और जैक्सन स्कोर कर पाए। रियल मैड्रिड के लिए एम्बापे और वाल्वेदे स्कोर रहे। सभी नतीजे AK 8-1 LASK 0। क्लब ब्रुज 2 एस्टन विला 3। बोरुशिया डॉर्टमुंड 3 विलारियल 2। लील 2 बेटिस सेविल 3। पोर्टो 0 मैनचेस्टर सिटी 2। रियल मैड्रिड 2 इंटर मिलान 1। आज के मैच बार्सिलोना का मुकाबला फेयेनूर्ड से होगा। स्टुटगार्ट वाइकिंग लिवरपूल अपने अनफील्ड रोड में होगा एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। नापोली आर्सेनल। पेरिस सेंट जर्मेन डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन स्लोवान ब्रातिस्लावा का स्वागत करेगा स्पोर्टिंग गलातासराय। और कल के मैचों में मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा साबा टीम के खिलाफ। साबा की टीम अज़रबैजान की टीम है, पहली बार चैंपियंस लीग में खेल रही है। इंग्लैंड में काराबाओ लीग कप में कल बोर्नमुथ की जीत हुई 4-0 से लिंकन सिटी के खिलाफ। क्रिस्टल पैलेस ने भी अपना मैच जीता 3-0 से मिडल्सब्रो के खिलाफ। लेटन ओरियंट 1 ब्रैडफोर्ड सिटी 3। सन्डरलैंड 1 हल सिटी 0। मिलवॉल 0 न्यूकासल यूनाइटेड 1। विलॉक का गोल दी मैगपाइज के लिए। आज इसी प्रतियोगिता में काराबाओ लीग कप में चेल्सी खेलेगा लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में ब्लैकबर्न 1 शेफील्ड यूनाइटेड 2। कार्डिफ 1 स्टोक सिटी

0: एक 123-1 से स्वांसी सिटी को हराया, वाटफोर्ड 2 प्रेस्टन नॉर्थ एंड 1, रेक्सम 1 बर्नले 1, बोल्टन 2 वेस्ट हैम यूनाइटेड 3। वेस्ट हैम यूनाइटेड इस लीग चैंपियनशिप में अभी पहले पोजीशन पर हैं। बानोदो की शॉर्ट लिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के साथ जूड बेलिंगम, डेक्लन राइस भी हैं, साथ में लियोनेल मेसी और वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन की टीम से 6 खिलाड़ी हैं, लामिन यमाल, फेरान टोरेस, पॉल कुबासी, फिर कुकुरेला, रोड्री, फाबियन रुइज। नोमिनीज में डेम्बेले, ब्रूनो फर्नांडेस, गैब्रियल, अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे भी हैं। इस साल फेवरेट हैं हैरी केन, पर वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम स्पेन से रोड्री या फाइनलिस्ट मेसी भी हैं। टेनिस, यूएस ओपन में सेमीफाइनल में पहुंची अरीना सबालेंका, 7-6, 3-6, 7-6 से सबालेंका ने नोस्कोवा को हराया। लड़कों में चाफुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ। आज क्वार्टर फाइनल में जेंग रिबाकिना, अगर रिबाकिना जीतती है तो वो वर्ल्ड नंबर वन बन जाएगी। मीरा अंद्रीवा का मुकाबला कोको गोफ से है। इसी समय जेसिका पेगुला का मुकाबला एमा नावारो से है। कार्लोस अल्काराज खेलेगा बेन शेल्टन के खिलाफ। कारेन काचानो वर्सेस अलेक्जेंडर ब्लॉक्स। और क्रिकेट में विमेंस एशिया कप में कल बांग्लादेश ने यूएई को हराकर टीम इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच बुक किया, मतलब सेमीफाइनल कल बांग्लादेश वर्सेस इंडिया और फ्राइडे यानी परसों पाकिस्तान खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ। और मॉरिशस में क्रिकेट आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का फाइनल इस संडे को ही है, इस पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। I'll catch you very soon. Till then, enjoy the music on the waves of Radio Musti. Take care. Bye bye.
1: Thank you, Arvind. Thank you so much. Have a good day.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein produit, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
4: A good beat for your morning show. James.
5: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: एंड यस यू लिसनिंग टू रेडियो मस्ती विदिता के साथ, ये है आपका मॉर्निंग बीट। समय हो गया है एक और गेम का,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो RM2
2: रेडियो मस्ती।
0: चलो मॉरिशस गेट रेडी, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द आइलैंड क्रिकेट एक्सट्रावागांजा ये शुरू हो गया है सीजन 4 एंड ऑर्गेनाइज बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद द इंडियन ऑयल सर्वो, को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP एंड फूड पार्टनर फॉर फाइनल्स जेन्स लिटिल इंडिया। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो थ्रिलिंग सीजन है ये किक ऑफ हुआ 1st of August को विद सिक्स पावर पैक टीम्स एंड नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू द बिग फाइनल बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीताज वर्सेस कैंपस अब्रॉड लायंस ऑन संडे एंड 13th सितंबर SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू में मैच शुरू हो रहा है 10 बजे। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव एट द ग्राउंड फॉर अ डे फुल ऑफ हाई एनर्जी क्रिकेट फन एंड एक्साइटमेंट। अपने फेवरेट टीम को आप शेयर करने के लिए आ सकते हैं, ग्रेट म्यूजिक साथ में ग्रेट फूड को एंजॉय कर सकते हैं एंड यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स ऑल व्हाइल रेडियो मस्ती गोज लाइव फ्रॉम द ग्राउंड। So don't miss the biggest cricketing showdown of the year, Island Cricket Extravaganza Season 4, the grand finale. And you love Indian food? Okay, so 500 rupees ka gift voucher at Saffron Grill could be yours. All you have to do is to play and win a delicious Indian meal. Karna kya hai aapko, mujhe ye batana hai. Jaise ki aap sabhi jante hain ki aaj Akshay Kumar apna birthday celebrate kar rahe hain. You have to tell me ki 2001 की वो कौन सी मूवी है जिसके लिए अक्षय कुमार को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर हिज नेगेटिव रोल। जी हाँ, उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था अपने नेगेटिव रोल के लिए इन 2001 की एक मूवी। वो कौन सी मूवी है आपको मुझे जवाब देना है 1549-1294।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Une envie de McDonald's là, tout de suite? Mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrées directement chez toi grâce à Deliveroo et Order Morse. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, mais commandé, nous amener. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
4: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
5: Tech Mag, powered by
6: 365. Bien plus encore.
7: When buying a phone, most of us compare the camera, storage and price. But a new European label adds information that may matter more after the first year. Battery endurance, repairability, resistance to drops and protection from dust and water. EU rules also require smartphone batteries to retain at least 80% of their original capacity after 800 charging cycles. Mauritius does not require this label, but you may see it on phones imported from or made for Europe. When comparing two similar models, check the repairability score and battery information. The cheaper phone today may cost more if it is difficult to repair tomorrow.
5: Tech Mag was powered by
6: 365. Bien plus encore.
1: RM2
2: Radio Musti.
8: North, South,

ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपके लिए सवाल था, आपको मुझे बताना है अक्षय कुमार को किस 2001 की मूवी के लिए मिला था फिल्मफेयर की तरफ से अवार्ड फॉर हिज नेगेटिव रोल, एंड द राइट आंसर इज 2001 की फिल्म अजनबी, जिसमें उनके साथ बॉबी देओल, कटरीना कैफ नहीं बल्कि करीना कपूर और बिपाशा बासु भी थी, डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान। वैसे अक्षय कुमार सिर्फ नेगेटिव रोल में नहीं बल्कि कॉमिक रोल में भी नज़र आए थे, एंड मैं आपको बताऊं कि उनको यहाँ पर मिला था एक और अवार्ड, और वो था उनके कॉमिक रोल के लिए इन द मूवी गरम मसाला। ओके, सो अभी के लिए विनर कौन है चलिए जानते हैं, क्योंकि सबने तो सही जवाब दिया है। विनर यहाँ पे सचिन भगीरथ ऑफ सेंट्रल फ्लैग, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको मिल रहा है सैफरन ग्रिल की तरफ से ₹500 का एक वाउचर, सो आप जाकर वहाँ पे एक डिलीशियस इंडियन मील एंजॉय कर सकते हैं। रिमेंबर, ये गेम आपके लिए हम लेकर आए थे, एंड द ग्रैंड फिनाले ऑफ आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा जो है सीजन 4 शुरू हो चुका है, तो मैच जो है

0: अपू के SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में सुबह 10 बजे शुरू होगी और यहाँ पर बिग फिनाले जो है जब बिग फाइनल बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीताज वर्सेस कैंपस अब्रॉड लायंस संडे 13 सितंबर को होने वाला है एंड द Island Cricket Extravaganza Season 4 is organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo, co-sponsored by MYOP and a food partner for finals, it's Jane's Little India. चलो तो इसी के साथ हमारे अब समाचारों का समय हो रहा है, मिलते हैं थोड़ी देर में.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

0: नमस्ते सबको के भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको के स्वागत करते हैं। जहाँ मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र ले सार्वजनिक पहुंच के स्थान के खोजे खातिर एगो नवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम करल गल। बाल अपने स्थमा में कल स्थल का दौरा करल गल। आवास और भूमि मंत्री शाकिल मोहम्मद बोलन की अभी खातिर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवा मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिम आर फ्लाक इलाका खातिर उपलब्ध जेके बाद में टापू के दूसर इलाका तक भी विस्तारित करल जाए। आज 9 सितंबर के बियान रुपया लावाल की 162वां पुण्यतिथि मनावल जाता। हर बरिस नियन काल भी बहुते जना मॉरिशस वासी जी हाँ श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर और प्रार्थना खातिर सैखवा में प्यालावाल के मकबरे ले तीर्थ यात्रा कर लन जा। SSON अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित मरीज लोग खातिर एगो विशेष वार्ड कायम करल गल बा। सुविधा मरीज लोग के विशेष जरूरत के मुताबिक देखभाल और इलाज उपलब्ध करावल जाए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पुलिस में रिवॉर्ड मनी के व्यवस्था के और मजबूत करे चाहता, जिनमें कोनो भी तरह के दुरुपयोग के रोकल जा सकी। FCC के महानिदेशक संजय दाऊदारी काल प्रेस से बात करलन। उबुलन की मामला के जटिलता के बावजूद ई जांच के 18 महीना में पूरा करल गल बा। उबुलन की पहले जांच में जस्टिस समय लगे, मगर अब ऐसे नहीं होता। संजय दाऊदारी के मुताबिक संस्था खाली जांच करे तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था की खामी के दूर करे आरोकर में सुधार लाने खातिर समाधान भी तलाशेला। और ई जांच के सिलसिला में कयन गो पुलिसकर्मी और पूर्व पुलिस आयुक्त अनिल कुमार दीपक के गिरफ्तार करल गल रहल। बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करे के उद्देश्य से ही FCC के एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव डिवीजन पुलिस संगे मिलके काम करता। दूसर देश के खबर में अमेरिका सेंट्रल कमांड बोले बा कि गल 2 दिन ले तेहरान द्वारा एगो अमरीकी युद्धपोत के दुहला निशाना बनाए के जवाब में अमेरिका सेना 5 ईरानी तेल टैंकर पर हमला कर लेबा। तेकरी संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी।

0: रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हैं आप. वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह के 8:08 हुए हैं.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: मैं भी जानती हूँ कि आप अपने घड़ी को टुकड़ टुकड़ ही देख रहे हैं कि वक्त भाग रहा है कि वक्त जा नहीं रहा है. Anyway, हमारी नज़र से देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वक्त भाग रहा है. तो आप लोग भी भागने की कोशिश मत करना. थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभल जाओ, वक्त के साथ आगे बढ़ो. वक्त से आगे जाने की कोशिश ना करो और हाँ, वक्त से पीछे भी ज़्यादा मत रहना, वरना वक्त बीत जाएगा और आप पछताते रहोगे कि भाई क्या हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं. और इससे पहले कि आप थोड़ा और परेशान हो, चलिए हम जान लेते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है और सारी जानकारियां पूजा के साथ.
1: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू है. मस्कैरिन के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे, दिन के दौरान हल्की वर्षा होगी, खासकर देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर. रात को भी बादल छाए रहेंगे. सेंट्रल प्लाटो तथा हवाई ढलानों पर रहकर वर्षा होगी. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. जनता से, मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 17 से 22, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय आज सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
5: Mais alors, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
6: Et promotion bidoun balle. 500 grammes carottes pour 14,95 €. 500 grammes giromont pour 12,95 €. 500 grammes mandarine sweet sea pour 49,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 109,95 €.
5: Pas de prix là. Bazaar Maudirou. Rendez-vous Gekot Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
7: On est tous winners.
1: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: Costa Foss.
1: Nestlé, good food, good life.
2: दोस्तों, हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी मुश्किलें आती हैं, और लाइफ में जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो इंसान टूट जाता है, निराश हो जाता है, निगेटिव चीज़ें सोचने लगता है, उसको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन हर एक ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल नहीं होता। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्या हम इसके साथ लड़ नहीं सकते। और तभी आप जब हिम्मत दिखाते हैं तो उस ऑब्स्टिकल को आप पार कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे, अरे ये तो कुछ नहीं था, है ना। क्योंकि ज़िंदगी करीब में देखने से मुश्किल लगती है, लेकिन दूर से देखने पर एक कॉमेडी लगती है। इसलिए मुश्किलों के बीच भी हंसने की कोई वजह आप हमेशा बचाए रखें।
3: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
4: Milo, libère ta force.
5: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
1: Nestlé, good food, good life.
3: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
4: Milo, libère ta force.
3: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
4: Milo, libère ta force.
3: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
4: Milo, libère ta force.
3: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
5: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
1: Nestlé, good food, good life.
6: RM2, Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए जी, हम यहाँ पर खेल रहे हैं अभी एक और गेम आपके साथ और आपको सही जवाब देना है. सो गेट रेडी टू प्ले एंड विन विद RM2 एंड यू कैन विन 200 टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्टीज ब्यूटी विद द नोवेल पर्पोज मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026. सो मार्क योर कैलेंडर फॉर सैटरडे 12th of September 7:30 PM एट द ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर एंड स्टे ट्यून टू RM2. प्ले अलॉन्ग एंड ग्रैब योर चांस टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेकुलर नाइट. यस, योर चांस टू विन स्टार्ट्स हियर. तो आपको मुझे बताना है, जी हाँ आपको मुझे बताना है कि मनुष्य चिलर किस साल में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. एंड यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर ऑन 5491294 एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव मी योर आंसर पूरे नाम और पते के साथ और जितने भी लोगों ने जीता है. ठीक, अगर आपकी जीत कभी नहीं हुई तो प्लीज हमारे साथ खेलिए और जीतिए ये इनाम. सो आई एम वेटिंग फॉर यू. जल्दी करें, अपने जवाब भेजिए और जीतिए इनाम.
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: ऑलराइट, तो अभी हमने आपसे एक सवाल किया था और हमने कहा था कि जो मनुष्य चिलर हैं उन्होंने किस साल में मिस वर्ल्ड का किताब जीता था, और यहाँ पर सही जवाब है आफ्टर 17 इयर्स इन 2017 आफ्टर प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, पहले प्रियंका चोपड़ा है, फिर उसके बाद वो आई एंड रिसेंट विनर वही है अभी। चलिए देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और अभी जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, दो एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ व्हाट इज ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026। ये सैटरडे 12 सितंबर को हो रहा है, 7:30 PM एट ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर। तो किसने जीता है ये इनाम, ये जानने का टाइम हो गया है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग गाइज। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जर्मनी सोमिया रिविया जो रोंपा से हैं, आपको कहेंगे कंग्रेचुलेशंस, आपने जीता है ये दो टिकट्स, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आपको आकर अपना ये टिकट एमबीसी कलेक्ट करना आना पड़ेगा सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच में। जी हाँ, 3 बजे के बीच में अपने आईडी कार्ड के साथ आप आइए और अपना टिकट कलेक्ट कर लीजिए। सो कंग्रेचुलेशंस, आपको मौका मिल रहा है टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड फिनाले ऑफ व्हाट इज ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको कहेंगे बहुत बहुत बधाई हो। एंड इसी के साथ चलिए अब हम खूबसूरत गीतों की लिस्ट में ये गाना भी आता है, क्योंकि जब हम मनुश्री चिलर की बात करते हैं तो उन्होंने अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड मूवी में, और ये मूवी जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ इसके साथ किया था।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: All right, 549 and 1294 नंबर है आपके मैसेज आपके डेडिकेशंस के लिए. यहाँ पे किसी ने मैसेज किया, थैंक यू फॉर प्लेइंग बर्बाद, मजा ही आ गया. चलो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा हमारे गाने सुनकर. और यहाँ पर इतने सारे लोगों के मैसेजेस हैं और बीच बीच में काफ़ी मस्ती भी हो रही है. सो गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे विजय के लिए और उनके सभी दोस्तों के लिए. कहते हैं मस्ती मॉर्निंग में मस्ती हुई और अभी जो है यहाँ पर हम मॉर्निंग बीट के साथ इन्जॉय कर रहे हैं. सो थैंक यू. नेक्स्ट गाना जाएगा टू माय सन अभिषेक जो 30 इयर्स के हुए हैं, उनकी डायरी, उनके मम्मी, उनके भाई पवन, सिस्टर मेघना और उनकी फियांसे यजना की तरफ से लॉट्स ऑफ लव टू यू. ऑलराइट, यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो है डेडिकेट करेंगे आप सभी दोस्तों के नाम. ये है बर्थडे विश माय सिस्टर इन लॉ. ओके, उनको हम भौजी बुलाते हैं, भाभी ने भौजी बुलाते हैं. वो फ्रूट्स बिजनेस करती हैं और बहुत सारा प्यार उनके लिए. आज उनका बर्थडे है तो करना जी को हैप्पी हैप्पी बर्थडे हम सब की तरफ से. चलिए इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट गाना है इट्स अ ब्यूटिफुल वन, यू गोना लव इट, फ्रॉम द मूवी बुलंदी.
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show.
1: चलो भाई, अभिनीता के जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच. एंड मॉर्निंग बीट में इतना ही था हमारा सफर. कल मॉर्निंग में 7 बजे आ जाएंगे आपको उठाने और आपका साथ देने के लिए. अभी थोड़ी देर में परी आ रही है लेकर आपके लिए मॉर्निंग मस्ती. अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.

0: समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं पूजा जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते पूजा।
1: नमस्कार रत्ना, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम। लापुनेस तमागे में कल स्थल का दौरा किया गया। आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने बताया कि फिलहाल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिमी और फ्लैग का इलाके के लिए उपलब्ध है, जिसे बाद में टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। आज 9 सितंबर को बयानवे रुपये अलावाल की 162वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हर वर्ष की तरह कल भी बड़ी संख्या में मॉरिशस वासी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने और प्रार्थना के लिए सैंखवा स्थित उनके मकबरे तक तीर्थ यात्रा की। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पुलिस में रिवॉर्ड मनी की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके। एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी ने कल अन्य अधिकारियों के साथ प्रेस से बातचीत के दौरान बताया कि मामले की जटिलता के बावजूद इस जांच को 18 महीनों में पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले जांच में अधिक समय लग सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संजय दाऊदारी के अनुसार संस्था केवल जांच करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था की खामियों को दूर करने और उसमें सुधार लाने के लिए समाधान भी तलाश रहती है। आपको बता दें कि इस जांच के सिलसिले में कई पुलिस कर्मियों और पूर्व पुलिस आयुक्त अनिल कुमार दीप को गिरफ्तार किया गया था। बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही एफसीसी की एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव डिवीजन ने पुलिस के साथ मिलकर काम किया है। विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले दो दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमरीकी युद्धपोत को दो बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Your news on NBC Play. NBC Play. NBC Radio.tv. NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एग्जैक्टली दोस्तों, बुध धो सा मन, मन तो चंचल सा है, अभी इसको ये भी चाहिए, कभी उसको वो भी चाहिए, अब मन का हम क्या कर सकते हैं। बस मन अगर करता है कि आप अच्छे गाने सुने तो आप हमारा साथ दे सकते हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। वॉर्म वेलकम दोस्तों, सुबह के 9:06 हो गए हैं, वेनसडे की ये सुबह यानी कि मिड वीक तक हम पहुँच चुके हैं, एंड नाउ जस्ट टू मोर डेज टू गो, और उसके बाद आने वाला है वीकेंड। सो आज के लिए मोटिवेशन तो इतना ही है कि बस दो दिन का और सवाल है, और उसके बाद होने वाले हैं कुछ आराम के पल आपके लिए। सो आई डू होप दैट वेनसडे मॉर्निंग की शुरुआत मस्त जबरदस्त हुई है, और साथ में यहाँ पर तो हम है ही आपके लिए कुछ स्पेशल सेगमेंट्स, कुछ गेम्स एंड आपको एंटरटेन करने के लिए गुड म्यूजिक। सो अभी से लेकर दिन के 12 बजे तक मैं हूँ परी आपके साथ। टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग्स ऑन रेडियो मस्ती, और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का हमेशा की तरह इंतजार ऑन 5499-1294।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: आधा
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: एंड वेल इट्स मॉर्निंग टाइम, सुबह के 9:18 टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ. और क्या जीत सकते हैं आप, लेट मी टेल यू. सो खेले आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ. प्ले अलोंग एंड ग्रैब योर चांस टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेक्युलर नाइट. लेकर आए हैं आपके लिए 2 टिकट्स टू ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्टिस ब्यूटी विद नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026. और इस स्पेक्टेक्युलर शो का हिस्सा अगर आप भी बनना चाहते हैं सो यहाँ पर सिंपल सा सवाल और उसका एक ईजी सा जवाब आपको हमें देना है. सो यहाँ पर सवाल है, विच फिल्म मार्क्ड आहान पांडेज बॉलीवुड डेब्यू? इज इट धड़क 2, इज इट सैयारा या फिर लव यापा? आपके सही जवाब 5499-1294 पर. बात हो रही है आहान पांडे के बॉलीवुड डेब्यू की. कौन सी थी वो फिल्म? वॉज इट ए धड़क, बी सैयारा या फिर सी लव यापा? आपके सही जवाब 5499-1294 पर, 5499-1294 पर. आपके पूरे नाम पूरे पते के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: So, well, यहाँ पर आपसे पूछा था सवाल आहान पांडे उनकी डेब्यू फिल्म कौन सी थी. Yes, the right answer is सैयारा. इसी फिल्म के साथ शुरुआत हुई and what a शुरुआत. So, well, यहाँ पर इस फिल्म के साथ लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार दिया. So, अभी के लिए तो हम आपके लिए ऐसे ही कुछ सिंपल से सवाल लेकर आए हैं जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं हमारे लकी विनर. So, well, ladies and gentlemen, the right answer is सैयारा. And लकी ड्रॉ के बाद कौन बनते हैं लकी विनर? आप है अमर गट्रेट से. So, congratulations. So well, Amar ji, aapne hume diya hai bilkul sahi jawab. And Sayara, yes, it's the right answer. So congratulations, jeeti hai aapne two tickets to grand finale of Fortis Beauty with a Noble Purpose, Miss India Worldwide Mauritius. So ye hone wala hai, yes, mark your calendar for Saturday, 12th of September 2026 at 7:30 PM at the Triano Convention Center. Aur aise hi yahan par aap ye shandar inaam to jeet chuke hain. So you can enjoy this spectacular night. So inaam ko collect karne के लिए अपने टिकट्स को कलेक्ट करने के लिए आना होगा एमबीसी. आप यहां पर आ सकते हैं टिल फ्राइडे सुबह 9 से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक. यस, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ओनली टिल फ्राइडे. और ये जो प्रोग्राम है होने वाला है ऑन 12th ऑफ सितंबर दिस सैटरडे इटसेल्फ. सो फटाफट से आ जाइए एमबीसी अपने आईडी के साथ. एंड इफ यू कांट कम अमर जी, नो वरीज, किसी और को भेज सकते हैं अपने आईडी के साथ टू कलेक्ट योर टिकट्स. सो कहेंगे आपको कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय कर सकते हैं आप इस ग्रैंड फिनाले को. सो अभी के लिए हमारा साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स. यस, आप ही हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. एंड इट्स टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग.
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: MPC तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: Welcome to RM2
3: Musty Mornings Radio Musty.
4: So, well, it's 9:34, थोड़ी ही देर में आपका हॉरोस्कोप, आपकी राशियां जानेंगे, कैसा रहेगा आपका दिन और क्या कहती हैं आपकी राशियां। It's your Musty Mornings, अरिजीत सिंह की आवाज, हर्षदीप कौर की आवाजें सजा रहे हैं आपकी मॉर्निंग्स को विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स। ऑलरेडी काम पर पहुंच चुके हैं या फिर घर पर अभी भी थोड़ा सा चिल कर रहे हैं या फिर ड्राइव करते हुए गानों को एंजॉय कर रहे हैं, जहां कहीं से भी ट्यून इन किया है, बस ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम पहुंचाते रहेंगे। हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग एंड हैव अ वंडरफुल टाइम RM2 रेडियो मस्ती के साथ।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: तो जी हाँ दोस्तों, सुबह के 9:40 होने को है। जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां। शुरुआत करते हैं वेदेरीज मेष राशि। आज आपका मान सम्मान और सामाजिक प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की छवि मजबूत होगी और लोगों के बीच आपकी बातों का महत्व होगा। टॉरस वृषभ राशि, आज संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है। एक साथ कई काम आने से व्यस्तता जरूर बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सपना आपका जो है वो आज पूरा हो सकता है। जेमिनी मिथुन राशि, आज समाज सेवा और अच्छे कामों के कारण आपकी पहचान और सम्मान बढ़ सकता है। आपकी नई कोशिशें सफल होंगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कैंसर कर्क राशि, आज का दिन सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहने के बावजूद मन में किसी बात को लेकर थोड़ी बेचैनी रह सकती है। भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा और उनका सहयोग भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति आप पर गलत आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए आप अपनी बात शांत और स्पष्ट तरीके से रखें। लियो सिंह राशि, आज का दिन सामान्य से बेहतर रहने वाला है। पड़ोस या आसपास चल रहे विवादों से आपको खुद को दूर रखना होगा और इसी में आपकी समझदारी होगी और पुराने लेन देन से जुड़ी कोई उलझन सुलझ सकती है, जिससे आज आपको बड़ी राहत मिल सकेगी।

0: कन्या राशि, आज सफलता और तरक्की के नए रास्ते आपके सामने खुल सकते हैं। लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम पूरा होने से आज आपको राहत मिलेगी। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी यानी कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहे और जल्दबाजी से बचे। लिब्रा तुला राशि, आज आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने की उम्मीद है। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आप धन निवेश से जुड़ी कई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। कानूनी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आज आपके दिमाग में लगातार नए और शानदार विचार आते रहेंगे। कारोबार में किसी नए काम या योजना की शुरुआत लाभदायक साबित हो सकती है। जीवन साथी के करियर में भी कोई नया अवसर दस्तक दे सकता है जिससे परिवार में खुशी बढ़ेगी। सजिटेरियस धनुराशि, आज लेन देन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखना जरूरी होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी लेकिन किसी के बहकावे या दबाव में आकर फैसला ना ले। साथ ही आज अपने पेरेंट्स के साथ आप कुछ क्वालिटी समय बिता पाएंगे जिससे आज मन को काफी खुशी मिलेगी। कैप्रिकॉन मकर राशि, आज का दिन नई संभावनाओं और अच्छे अवसरों की ओर इशारा कर रहा है। यात्रा या घूमने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो आगे आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। एक्वेरियस कुंभ राशि, आज घर परिवार में मौज मस्ती और खुशियों का माहौल बना रहेगा। छोटे बच्चों के साथ बिताए गए समय आपकी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। पिताजी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने से आपको खुशी होगी और यात्रा के दौरान आपकी कीमती सामान का आप विशेष ध्यान दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस मीन राशि, आज भाग दौड़ ज्यादा रहने के कारण मन थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर सकता है। काम में लापरवाही करने से आज की छोटी गलती भविष्य में कोई बड़ी परेशानी लेकर आ सकती है, इसलिए हर जिम्मेदारी आप अच्छे से पूरी करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा वरना परीक्षा के समय मुश्किलें हो सकती है। तो ये थी आज के लिए आपकी राशियां। एंड विशिंग यू गुड लक एंड अ वंडरफुल डे अहेड।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. RM2 Radio Musti.
0: And after your horoscope, back to music. लेकर चलते हैं आपको down memory lane with this beautiful, beautiful गाना. उदित नारायण साधना सरगम की आवाजें, फिल्म थी दिल, पिक्चराइज हुआ था आमिर खान एंड माधुरी दीक्षित पर। वो भी क्या दौर था, वो भी क्या लव स्टोरीज थी, वो भी क्या गाने थे, वो भी क्या लिरिक्स थे। तो बस एक बार फिर उसी मैजिक को रिक्रिएट कर रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। परी का साथ, दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वेडनेसडे मॉर्निंग। मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check exactly 10 a.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. पूजा से आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी सभी को. मेरा नमस्कार मॉरिशस में समुद्र तटों तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवास एवं भूमि मंत्रालय ने एक इंटरैक्टिव मैप ऑनलाइन जारी किया है, जिसकी मदद से सार्वजनिक समुद्र तट और समुद्र तट तक

0: पहुंचने वाले रास्तों की पहचान की जा सकती है। इस मैप में 4 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, ला पुनेज, ला मीवा, तमारे और फ्लैक। बाद में इस मैप को टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाली बियन यूरोपीय लावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण। पेलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा कल शुरू हुई, जो मात्र पैदल तय किया जाने वाला रास्ता नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। आज पेलावाल की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज के लिए बियन यूरोपीय लावाल के मॉरिशस आगमन की 150वीं वर्षगांठ और उनकी मृत्यु की 162वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोर्टलिस के बिशप मोसेयर जॉन मिकाएल जुरोन ने अपने प्रवचन में ये बात कही। पोर्टलिस के बिशप ने युवाओं में नशीली दवाओं के बढ़ते प्रकोप की भी कड़ी निंदा की। विदेश में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ओमान की खाड़ी में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को से जुड़े 4 ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान के खाड़ी तट से दूर स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल द्वीप के पास एक अन्य टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। पागोडा लिन कंकावल क्यूपिप में 52 साल के 52 years old श्री गंद्रनाथ तलु, जिन्हें लोग बोबी नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे इनके मकान पागोडा लिन कंकावल क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3:30 PM। Petit chemin Bélé à Rivière Sèche, 76 साल के 76 years old श्री नंदत बाबूलाल, जिन्हें लोग ज्ञानदेव नाम से जानते थे और जो विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल के पिता थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनकी पत्नी देवंती बाबूलाल के मकान पिछी श्रीमय बिलिया रिव्या सैश से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए बिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। और कोरियोलिस रोड से जिया मिलफोरा साइड में 58 साल की 58 years old श्रीमती अमृति नंदा उबिलक पैदाशी नाम लक्ष्मण और जिन्हें लोग नंदा नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके पति महेश्वर नाथ उबिलक के मकान कोरियोलिस रोड से जमील फॉरेस्ट साइड से उठाकर अलीब्रियों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

एंड वेल दोस्तों, सुबह सुबह अलार्म डालकर उठना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मंथ एंड जब सैलरी आती है लगता है कि भाई एवरीथिंग वाज वर्थ इट। लगता है कि सपनों को पूरा करने की तरफ एक और कदम बढ़ चुका है। तो आप सभी का वार्म वेलकम, वेडनेसडे है और आप हमारा साथ दे रहे हैं। दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स। मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

सो वेल मस्ती मॉर्निंग्स में शामिल होते हुए कुछ प्यारे गाने अभी के लिए आतिफ असलम ज्योतिका टंगरी की आवाजें लैला मजनू एंजॉय दिस वन.

And well, आज मौसी देवी ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. Wishing her a happy, happy birthday. Wishes लेकर आए हैं समायरा, आतिश एंड विजया. आपके लिए स्पेशल विशेज ऑन योर स्पेशल डे.

So, well, Mossy Davina, it's your birthday. Special, special wishes. Samaira, Atish and Vijaya ki or se. Hum bhi wish kar rahe hain aapko happiest birthday. Be happy and bas aapki jo bhi wishes hain wo puri ho jayein. साथ ही आज कविता अभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आपके लिए स्पेशल विशेस लेकर आए हैं आपके पति अखिलेश सो ऑन योर स्पेशल डे स्पेशल विशेस आपके नाम

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
0: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल, गुड म्यूजिक कंटिन्यूज। यह है आपका अपना मस्ती मॉर्निंग, ऐसा दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती फॉर नाउ। अरिजीत सिंह की आवाज, एक और प्यारा सा गाना डेडिकेट करेंगे हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। और आज हस्बैंड मोगम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम वाइफ आशा, उनकी बेटी सनाया और सभी परिवार की ओर से बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेस। सो वेल मिस्टर मोगम, इट्स योर बर्थडे, गुड विशेस आपके नाम ऑन योर स्पेशल स्पेशल डे। बेगम मोहरन हमारा साथ दे रही हैं, आप गोंदेवास से हमारा साथ दे रही हैं। एंड चलिए ऐसे ही कुछ रोमांटिक गाने हम आपके नाम भी डेडिकेट कर रहे हैं। विशिंग यू अ वंडरफुल मॉर्निंग एंड अ वंडरफुल डे अहेड। परी का साथ दिन के 12 बजे तक मस्ती मॉर्निंग्स। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
3: चलिए दोस्तों, इट्स टाइम फॉर सम फैशन टिप्स। कुछ फैशन टिप्स आपसे शेयर करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे बेल्ट की। यस, बेल्ट को सिर्फ वेस्ट के लिए मत रखिए, यानी कि एक स्टेटमेंट बेल्ट आपके लुक को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो एक लूज ब्लेजर, ओवरसाइज्ड शर्ट या फिर एक फ्लोई ड्रेस के साथ आपका आप बेल्ट ट्राई करें। यह आपके वेस्ट को डिफाइन तो ज़रूर करेगा और एनहांस करेगा आपके लुक को भी। साथ ही ज्वेलरी का रूल ऑफ थ्री से आप ट्राई करें। वन नेकलेस, वन ब्रेसलेट, वॉच या फिर वन पेयर ऑफ इयररिंग या फिर थ्री डेलिकेट रिंग्स। टू मच लेयरिंग के बजाय आप थ्री इंटेंशनल पीसेस को ट्राई कर सकते हैं एंड इट्स गोइंग टू लुक वेरी वेरी स्टाइलिश। स्कर्ट के साथ अनएक्सपेक्टेड फुटवेयर, वैसे तो जरूरी नहीं कि मिडी स्कर्ट के साथ आप हमेशा हील्स ही पहने, कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई लोफर्स, यू कैन ट्राई बैले हील्स, मैरी जेम्स या फिर आप स्लीक एंकल बूट्स भी ट्राई कर सकते हैं। सेम स्कर्ट लेकिन डिफरेंटली स्टाइल करना आपके लुक को और भी एनहांस कर सकता है। सो ये थे कुछ स्टाइलिंग टिप्स आपके लिए। स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2
1: रेडियो मस्ती,
2: फील द मस्ती।

और अभी के लिए हमारे साथ कनेक्टेड हमारे सभी लिसनर्स गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को श्याम देवचंद फ्रॉम पेबे डेडिकेटिंग गाना सभी दोस्तों के नाम सुकू रवि राहुल महीन नवीन सुखदेव रामू बलदेव सभी को याद कर रहे हैं आप तो चलिए ये गाना आपके सभी दोस्तों के नाम यहाँ पर तुलसी कुमारी जी हमारा साथ दे रहे हैं आप भी सो ये गाना आपके नाम लाल माची से हमारे साथ कनेक्टेड हैं उदित नारायण सपना मुखर्जी की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म फिदा ये गाना आप सभी के नाम मस्ती मॉर्निंग्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती साथ रहेगा आपका और मेरा यानी कि परी का दिन के 12 बजे तक तब तक के लिए कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चुनकर लाए हैं कुछ स्पेशल सेगमेंट्स कुछ स्पेशल गेम्स एंड ऑफकोर्स आपका स्पेशल सा साथ ऑन 5499 1294 फिदा फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए एंजॉय दिस वन

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, din ke 11 baje hain. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। आज ज्ञान रूपी अलावाल की पुण्यतिथि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, प्रार्थना करने और उनके सेवा एवं मानवता के संदेश को याद करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। उनका जीवन आज भी लोगों को दूसरों की सेवा करने, जरूरतमंदों का सहारा बनने और मानवता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। मॉरिशस मतलब आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन मैप जारी किया, जिसके माध्यम से लोग सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंचने वाले मार्गों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। फिलहाल इस इंटरैक्टिव मैप में चार क्षेत्र

0: la prunelle, la mi-voix, tamarin, flac, cochamil, qui a gagné. Année valise, sommeil, mais map, cavistar, marcheski, agne, il a compté que bri, qui a jaiga, ta qui logo, co sarvejnik, samudjetato, tak uplab de ponche, qui bari me adhik, viapak, jankari, mil saki. विदेश में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले पर इजरायल की तीखी प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है। इजरायल के गुस्से का सबसे अधिक सामना ब्रिटेन को करना पड़ा, लेकिन 12 देशों द्वारा एक साथ कदम उठाने के फैसले ने स्पष्ट रूप से इस आक्रोश की भावना को और तीव्र कर दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। पेची शुमे बिले अरिव्या सेश में 76 साल के 76 years old श्री नंदत बाबूलाल जिन्हें लोग ज्ञानदेव नाम से जानते थे और जो विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल के पिता थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनकी पत्नी देवंती बाबूलाल के मकान शुमे पिछी शुमे बिलिया रिव्या सैश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिलिया किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शिवाला रोड पिछी पाकि मोताई ब्लॉन्श में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री हरिनारायण अनतरास जिन्हें लोग रमेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले कृषि मंत्रालय में ड्राइवर का काम करते थे। इनकी अर्थी आज शाम साढ़े तीन बजे इनके मकान शिवाला रोड पिछिपा के मोताई ब्लॉन्श से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉन्श कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। पागोडा लेन कौ कावल क्यूपिप में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री गंद्रनाथ तल्लू जिन्हें लोग बोबी नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 3:30 PM इनके मकान पागोडा लेन कौ कावल क्यूपिप से उठाकर बिगाहा कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। और कोरियोलिस रोड सिजिया मिल फॉरेस्ट साइड में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमृती नंदा उबिलक पैदाशी नाम लक्ष्मण और जिन्हें लोग नंदा नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके पति महेश्वरनाथ उबिलक के मकान कोरियोलिस रोड से जियामिल फॉरेस्ट साइड से उठाकर आले भैया कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

फिनाले कॉन्टिनेंटल चीतास वर्सेस कैंपस अब्रॉड लायंस होने वाला है ऑन संडे 13th ऑफ सितंबर SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू. मैच स्टार्ट्स एट 10 AM. सो जॉइन अस लाइव एट द ग्राउंड फॉर द डे फुल ऑफ हाई एनर्जी क्रिकेट फन एंड एक्साइटमेंट. चीयर फॉर योर फेवरेट टीम. एंजॉय ग्रेट फूड म्यूजिक एंड स्टैंड चांस टू विन

तो चलिए दोस्तों, इट्स 11:37, वेडनेसडे तो आ चुका है और अब हम जानते हैं एवरीबॉडी इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर गणपति. और ये जो प्रिपरेशंस है, ये जो फेस्टिव टाइम है, बस अब शुरू हो चुका है. एंड आफ्टर जन्माष्टमी, गणपति, गणपति के बाद नवरात्रि, दिवाली और सेलिब्रेशन कंटिन्यू ही होने वाले हैं. और ऐसे फेस्टिव सीजन में अगर आप भी कुछ खास स्पेशल करना चाहते हैं अपने घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सो व्हाई नॉट. जैसे हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा ग्रीन टच आपके घर को एक फ्रेश लुक जरूर देता है. सो एक छोटा सा कॉर्नर जहां पर आप एक ग्रीन स्पेस बना सके, एक ऐसी स्पेस जहां पर आपको घर के बाहर जाना भी ना पड़े और वही स्पेस पर यू कैन एंजॉय योर चाय कॉफी एंड आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं. जैसे आप उसमें एक लो सीटिंग बना सकते हैं, यहां पर आर्टिफिशियल ग्रास बना सकते हैं, पीछे आप कुछ आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स या फिर प्लांट्स है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज रियल प्लांट्स. आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम काम में बिताते हैं, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, सो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन फॉर आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल ग्रास. वो जो एक ग्रीन स्पेस है वो हमेशा हार्ट को हैप्पीनेस देता है. सो एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पर आप लो सीटिंग बना सके, कुछ कुशन्स जहाँ पर नीचे बैठकर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके. वीकेंड में जब आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, सो वहाँ पर बैठकर यू कैन एन्जॉय योर चाय कॉफ़ी और चिट चैट. सो ये एक स्पेस खास होता है और जब फेस्टिव सीजन होते हैं तो लगता है कि भाई घर में कुछ खास एंड डिफरेंट जरूर होना चाहिए. सो बस ये छोटा सा ग्रीन स्पेस जो आप अपने घर के लिए रेडी कर सकते हैं, जो आपके माइंड को भी खुशी देगा, आपके दिल को भी खुशी देगा. और अभी के लिए दोस्तों, हमको जो खुशी देता है वो है आपका प्यार, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. सो बस आप भेज सकते हैं अपना प्यार ऑन 54991294. और यहाँ पर आपके लिए हम चलाते जाएंगे ऐसे ही कुछ प्यारे गाने. So that's Dev Negi की आवाज. ये गाना हमारे सभी स्वीटहार्ट्स, हमारे सभी लिसनर्स के नाम. दिल के जो सबसे ज्यादा करीब होता है वही तो स्वीटहार्ट होता है. So हमारे सभी डियर लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ये है स्वीट सा गाना आपके नाम फॉर ऑल द लिसनर्स. और अभी के लिए परी आपके साथ, इट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स दोपहर के 12 बजे तक.

और चलिए दोस्तों अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने हम आपके लिए चलाते जाएंगे और इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। जाते जाते यहाँ पर रेशमा लक्ष्मण साथ दे रही हैं और कहती हैं आज मामा सीला टिप्सू अपना 70th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, मेबर्ग रहती है, सभी गनवार लक्ष्मण परिवार उनके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार। सो सीला जी गुड विशेज ऑन योर स्पेशल स्पेशल डे, स्टे ब्लेस्ड स्टे हेल्दी एंड ऐसे ही पूरे परिवार का प्यार साथ आपको मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों राहत फतेह अली खान साहब की आवाज और इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय, लेकिन मुलाकात होगी 2 से 4 में इन योर बॉम्बे टॉकीज। तब तक के लिए ये प्यारा गाना आपके नाम और उसके बाद समाचारों के बाद एंजॉय कर पाएंगे कुछ पुराने गाने इन योर रेट्रो रिदम। सो स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ, मुलाकात होगी 2 से 4 के बीच में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय योर वेडनेसडे।

0: Welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, 12 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी. सभी को मेरा नमस्कार. आज 9 सितंबर को बयानवे रुपये अलावाल की 162वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है. मॉरिशस के धर्म प्रचारक और सेवक पे अलावाल को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सैखवा में कई विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है. कल बड़ी संख्या में मॉरिशस वासियों ने सैखवा की ओर तीर्थ यात्रा की. वर्ष 2026 की इस तीर्थ यात्रा का विषय है पे अलावाल के साथ मिलकर एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज की ओर. कल शाम अपने प्रवचन में पोर्टिस के बिशप मोसेया जो मिकाएल जुरन ने बयान रुपये अलावाल के उदाहरण का अनुसरण करते हुए समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की पीड़ा और उनकी आशाओं को सुनने का आह्वान किया. समाज के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने चर्च, गिरजाघर और सभी मॉरिशस वासियों के से भाईचारे, एकजुटता और गरीबों एवं जरूरतमंदों की चिंता के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आग्रह किया. मॉरिशस मतलब आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरएक्टिव ऑनलाइन मैप जारी किया जिसके माध्यम से लोग सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंचने वाले सार्वजनिक मार्गों की आसानी से पहचान कर सकते हैं. फिलहाल इस इंटरएक्टिव मैप के मतलब मैप में चार क्षेत्र लाप्रुनेज, लामीवा, तमारे और फ्लाक को शामिल किया गया है.

0: आने वाले समय में इसका विस्तार मॉरिशस के अन्य इलाकों तक भी किया जाएगा ताकि लोगों को सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तक उपलब्ध पहुंच के बारे में अधिक व्यापक जानकारी मिल सके। विदेश में कब्जे वाली वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले पर इजरायल की तीखी प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। इजरायल के गुस्से का सबसे अधिक सामना ब्रिटेन को करना पड़ा, लेकिन 12 देशों द्वारा एक साथ कदम उठाने के फैसले ने स्पष्ट रूप से इस आक्रोश की भावना को और तीव्र कर दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। पिछले शुमे बिले अखिविया सेशन में 76 साल के 76 years old श्री नंदत बाबूलाल जिन्हें लोग ज्ञानदेव नाम से जानते थे और जो विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल के पिता थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनकी पत्नी देवंती बाबूलाल के मकान पेचिशु में बिलिया हिव्यास से उठाकर बिलिया कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। शिवाला रोड पिचीपा के मुताई ब्लांश में 78 साल के 78 years old श्री हरिनारायण अनतरास जिन्हें लोग रमेश नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले कृषि मंत्रालय में ड्राइवर का काम करते थे। इनकी अर्थी आज शाम साढ़े तीन बजे इनके मकान शिवाला रोड पिचीपा के मुताई ब्लांश से उठाकर मुताई ब्लांश कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। पागोडालीन कंकावाल क्यूपिट में 52 साल के 52 years old श्री गुंद्रनाथ तल्लू जिन्हें लोग बोबी नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज शाम 3:30 PM इनके मकान पागोडालीन कंकावाल क्यूपिप से उठाकर बिगागा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: मस्त समा है ना, वेंसडे 9th ऑफ सितंबर. वाओ, अभी तो सितंबर में कदम रखा था. टाइम इज गोइंग बाय वेरी क्विकली, लेकिन हमारे जो रेट्रो गाने हैं वो हमें स्लो डाउन करा रही है. 2 बजे तक रेट्रो वाइब्स ऑन गोइंग है विद नीलमणि. सो यही पर है ना कनेक्टेड, एंड ऑल्सो गेम्स भी ऑन द वे है. सो क्या पता आज आपकी जीत हो पाए. लेट्स सी वेयर इट गोज. नेक्स्ट गाना करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम.
0: Retro Rhythm.
2: RM2 Ready.

0: Retro Rhythm. वाला फूलों का तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए गेम है वो भी फन मस्ती वाला, क्योंकि आफ्टर गिविंग द राइट आंसर आपको मिलेगा 2 tickets to attend the Circus Zavata show. आपको बस बताना है कि किस दिन पर, यानी कि weekdays के किस 2 दिन पर Zavata performances होते हैं at 5:30 PM. बस यही शेयर करना है RMG Radio मस्ती के साथ 54991294 पर, फिर आपको मिल सकता है एक नहीं बल्कि 2 tickets to enjoy the Circus show. तो देखते हैं आज का winner कौन बनता है. Good luck to you.
1: Retro Rhythm. RM2 Red.

0: रेट्रो रिदम।
1: तो इस तरह गाना सुन के इसी तरह हमें हमारा विनर भी मिल गया, क्या बात है। एंड ये सवाल पूछा गया था कि वीक डेज पर किस दो दिन पर ज्यादा परफॉर्मेंसेस होती हैं एट 5:30 PM। एंड सही जवाब सच्ची में है थर्सडे एंड फ्राइडे। तो कंग्रेचुलेशंस टू आवर विनर जो कि बन चुके हैं। And yes, congratulations to our winner, जिनका नाम है अदनान साहब। Thank you, RM2 Radio मस्ती के साथ connected रहने के लिए। And also, आपको दो tickets collect करने के लिए आ सकते हो आप MBC within working hours, यानी कि 9 to 3 PM। तो चलिए अभी retro rhythm में एक और आवाज को appreciate करते हैं retro vibes के साथ। And let me know आप कौन सा गाना या मैसेज डेडिकेट करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस को। एंड अगर आप अभी रास्ते में हो, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ विद योर RM2 रेडियो मस्ती।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: लॉटरी लग जाने वाली है किसकी? अरे उसी का।

0: जो कनेक्टेड एआरएम टू रेडियो मस्ती के साथ आपको एंटरटेन करने के लिए और पैम्पर करने के लिए गेम्स ऑन गोइंग है अभी रेट्रो रिदम के सफर में. एंड यस, अभी भी आप टू टिकट्स जीत सकते हैं. एंड दिस टाइम फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ फॉरेस्ट ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड मॉरिशस 2026 का. एंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि फाइनल्स किस डेट पर हो रही है, किस डेट पर फाइनल है. 5499124 पर लेट्स गो.
1: Retro Rhythm. RM2.

0: रेट्रो रिदम।
1: जी हाँ, दूसरा गेम भी ऑनगोइंग है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तारीख पर होने वाली है फाइनल्स। आंसर है 12 सितंबर। सही जवाब मिला है हमें फ्रॉम यस, विनर हमारे बन चुके हैं तुलसी जी, जो कि लेस्पेरांस से त्रिविशे के रहने वाले हैं। क्या बात, आप अटेंड कर पाएगी फाइनल्स ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड मॉरिशस 2026, जो कि होने वाला है 12 सितंबर को। टिकट्स आपको खुद आकर कलेक्ट करनी होगी एमबीसी विद इन वर्किंग आवर्स, यानी कि 9 से लेकर 3 बजे तक। अभी के लिए आप मस्ट इन्जॉय कीजिए द रेस्ट ऑफ योर डे को हमारे रेट्रो सॉन्ग्स के साथ, जो कि 2 बजे तक ऑन गोइंग है आपके लिए। आरएम जो वीडियो मस्ती पर ही
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमा नमस्कार
4: नमस्कार नीलमणि सभी सुनने वालों को नमस्कार आज 9 सितंबर को बियानो पहलावाल की मृत्यु के 162वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है मॉरिशस के इस महान संत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सेंट क्वा में कई विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं कल कई मॉरिशनों ने सेंट क्वा की तीर्थ यात्रा की वर्ष 2026 की इस तीर्थ यात्रा का मुख्य विषय है पहलावाल के साथ एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे वाले समाज की ओर कल शाम दिए गए अपने संदेश में मोनसिग्नोर जॉन मिकाएल जुरन ने बियानो पहलावाल का अनुसरण करते हुए सबसे कमज़ोर लोगों के दुखों और उम्मीदों को सुनने का आह्वान किया है समाज की समस्याओं के सामने उन्होंने चर्च और सभी मॉरिशस वासियों से भाईचारे एकजुटता और सबसे गरीबों की परवाह के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आग्रह किया है आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कल कई मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ तमाहे किला पुनर्ज इलाके का दौरा किया इसका उद्देश्य उन इलाकों की पहचान करना था जहां जनता का समुद्र तट तक सार्वजनिक प्रवेश अवरुद्ध है और ये सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक समुद्र तट तक पहुंच दर्शाने वाले बोर्ड लगाए जाएं और वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें मंत्री ने इसके अलावा अपने मंत्रालय की वेबसाइट पर एक नए इंटरक्टिव मैप प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लॉन्च करने की घोषणा की है जिसमें सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तक जाने वाले रास्तों की सूची दी गई है और विदेश में अमरीकी सेना का कहना है कि उसने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को द्वारा अमरीकी नौसेना के युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हमलों के बाद ईरान के 5 कच्चे तेल के वाहक जहाजों को नष्ट कर दिया है तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद नमस्कार
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
5: Retro Rhythm.
0: RM2, Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: रेट्रो का समय है, ऊपर से वेदर भी है मस्त, एंड नमनी वापस आ गए हैं रेट्रो रिदम के सेकंड आवर में। एंड आज है हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का बर्थडे। 90s में जिन्होंने एक्शन, रोमांस और कॉमेडी तीनों में अपना ही अलग अंदाज बनाया, उनकी एनर्जी ना आज भी सेम है वही। और जब रेट्रो वाइब्स ऑन है तो अक्षय कुमार की स्पेशल डे पर 90s का एक सुपरहिट गाना तो बनता है। तो चलिए रिवाइंड करते हैं उस गोल्डन एरा को और सेलिब्रेट करते हैं अक्की के बर्थडे को एक रेट्रो म्यूजिकल स्टाइल में। हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार एंड टू ऑल दोस जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस नेक्स्ट गाने को आपके ही आरएम टू रेडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम टू

0: MPC तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Balalut station.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती, रेट्रो रिदम।
3: Yes, retro rhythm का सफर ongoing है। ना आपको पता है दोस्त, आज हम celebrate कर रहे हैं wonderful weirdos day को। And अजीब होना कोई बुरी बात नहीं होता है, अजीब होना भी एक talent है। अक्षय कुमार से पूछ लीजिए, 90s में कभी खिलाड़ी, कभी मिस्टर बॉर्न, कभी रोमांटिक हीरो और कभी एकदम हटके कैरेक्टर्स में आ जाते थे। एंड शायद इसलिए कहते हैं कि थोड़ा weird, थोड़ा crazy और थोड़ा different होना ही तो personality का असली मसाला होता है। सो टुडे डोंट ट्राई टू फिट इन, अपना वंडरफुल वियर्ड सेल्फ बनाए रखें एंड रेट्रो रिदम के साथ एंजॉय करते रहिए रेट्रो वाइब्स को, क्योंकि जल्द ही लाने वाले हैं आपके लिए अनदर गेम।
2: रेट्रो रिदम
1: RM2

0: Retro Rhythm.
1: से लास्ट गेम रेट्रो रिदम का सवाल पूछा गया था कि बैक टू 2024 में 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विनर कौन थी एंड सही जवाब हमें मिला है फ्रॉम एंड यस आप है किशोर सुहराई जी जो बन चुके हैं विनर ऑफ द टू टिकट्स कंग्रेचुलेशंस आपको मिला है दो टिकट्स टू एंजॉय द लाइव शो ऑफ Forest Beauty with a Noble Purpose, Miss India Worldwide Mauritius 2026 का एंड आपको बता देते हैं कि टिकट्स कलेक्ट करने के लिए आपको आना है MBC विद इन वर्किंग आवर्स 9 से लेकर 3 बजे तक For now, big hello to all those who connected है RM2 Radio Mastery के साथ आप सुन रहे हैं Retro Rhythm.
0: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Mastery.

0: Retro Rhythm. And yes, it's almost time for me to say bye-bye. So, जल्दी से आपके messages को पढ़ लेते हैं. वीना जी को बड़ा सा hello वो जुड़ी हुई है हमारे साथ और वो मांग रहे हैं गाना मैं तेरे लिए. तो आपके लिए ढूंढ कर चिल्लाएंगे जरूर. And also connected है हमारे साथ हमारी बड़ी यालेश. बड़े दिनों बाद hearing from you. Thank you साथ देने के लिए. सुया जी, मीता जी, अब्दुल जी, सायरा बानो जी भी आप कनेक्टेड है हमारे साथ, उसके लिए थैंक यू. एंड आपका साथ ही हमारे रेट्रो रिदम को और भी टाइमलेस बना देता है. सो आई होप कि आप खाना टाइम से खा रहे हो एंड ऑल्सो खुद को हाइड्रेट करते रहिए. स्टे वार्म क्योंकि बाहर फ्रीजिंग है. एंड ऐसे ही आप जुड़े रहिए आरएमजे रेडियो मस्ती के साथ. हैव अ ग्रेट आफ्टरनून. एंड नेक्स्ट गाना आशा भोंसले जी की आवाज़ में स्पेशली आपके लिए छोड़े जा रहे हैं.
1: RM2 RM2

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दोपहर के 2 बजे हैं। चलिए एक बार फिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमान नमस्कार।
6: नमस्कार नीलमणि सभी को नमस्कार। आज 9 सितंबर को बियनोगे पहलावाल की मृत्यु के 162वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मॉरिशस के इस महान संत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सैंकड़ों में कई विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कल कई मॉरिशनों ने सैंकड़ों की तीर्थ यात्रा की। कल शाम दिए गए अपने संदेश में मोंसिनियर जोमिकल जुगन ने बियनोगे फावलावाल का अनुसरण करते हुए सबसे कमज़ोर लोगों के दुखों और उम्मीदों को सुनने का आह्वान किया है। समाज की समस्याओं के सामने उन्होंने चर्च और सभी मॉरिशसवासियों से भाईचारे एकजुटता और सबसे गरीबों की परवाह के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आग्रह किया है। आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कल कई मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ तमाहे के लापोनर्स इलाके का दौरा किया। उद्देश्य उन इलाकों की पहचान करना था जहां जनता का समुद्र तट तक सार्वजनिक प्रवेश अवरुद्ध है और ये सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक समुद्र तट तक पहुंच दर्शाने वाले बोर्ड लगाए जाएं और वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें। और विदेश में यूके के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अचानक आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को विमान सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। इस गड़बड़ी की वजह से लगभग 2000 उड़ानें पूरी तरह से रद्द करनी पड़ी हैं जिससे हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों दासियों बॉम्बे टॉकीज मैं हूं परी आपके साथ 2:26 हो रहे हैं और जैसे आप जानते हैं बॉलीवुड की अपडेट्स बी टाउन की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं और आज कल यानी कि हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर हो रही है और अब आज सुबह से बस इसी की चर्चाएं हो रही है एंड यस द फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ बेबी दुआ अब पूरी फैमिली की पिक्चर्स शेयर हुई है यानी कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह एंड दुआ जी हाँ उनकी प्यारी सी बेटी दुआ एंड प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण इन्होंने एक फैमिली जो एल्बम है वो शेयर किया है जहाँ पर कुछ तस्वीरें उन्होंने सभी उनके फैंस के साथ शेयर की ऑन सोशल मीडिया एंड एवरी वन going gaga over this jahan par wo dekh rahe hain ki baby dua has grown so much and now she is waiting for her next baby brother ya fir baby sister jo bahut hi jald aane wale hain in this world So, अभी के लिए तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह के जो फैंस है वो एकदम हैप्पी हैप्पी है इन तस्वीरों को देखकर इससे पहले एआई जनरेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आई दिखाते हुए कि दैट्स बेबी दुआ बट नाउ वी सॉ द रियल पिक्चर्स एंड वी मस्ट से दैट वो एग्जैक्टली अपने पापा की तरह दिखती है विद द स्माइल विद द आई सब कुछ उनके पापा की तरह है एंड जो पिक्चर्स हैं दे आर सो सो ब्यूटिफुल कि दिल करता है इन पिक्चर्स को बस देखते ही जाए सो आई गेस दैट्स द लव ऑफ फैंस जो उन तक पहुँच रहा है एंड दीपिका पादुकोण जहां पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हो रहे थे जहां पर लोग कह रहे थे कि शी इज नॉट रियली प्रेग्नेंट एंड बहुत सारी और बातें जहां पर दीपिका पादुकोण ने कुछ नहीं कहा था फाइनली बस जब बेबी आ गया तो ये खबर उन्होंने अपने फैंस तक पहुंचा दी दैट दे हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल और बेबी गर्ल का नाम उन्होंने दुआ रखा है एंड नाउ दिस टाइम यस उनकी प्रेगनेंसी पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर की है जहां पर अपने बेबी बम के साथ वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही और साथ ही साथ बेबी दुआ जो एकदम हैप्पी हैप्पी नजर आ रही हैं अपने पापा और अपने मम्मी के साथ सो ये पिक्चर्स अभी के लिए तो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं एंड आई एम श्योर बहुत ही जल्द जब वो अनाउंस करेंगे अपने सेकेंड बेबी का बर्थ सो ये भी टॉक ऑफ द टाउन होने वाला है सो फॉर नाउ लोड्स ऑफ गुड विशेज टू द एंटायर फैमिली जो अपने हैप्पीएस्ट फेज में है एंड गुड विशेज के साथ साथ यहाँ पर हमारे लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं चलिए दोस्तों दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज मैं हूं परी आपके साथ बी टाउन की खबरें लेटेस्ट ट्रैक्स अभी से लेकर दिन के 4 तक
3: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती योर नंबर वन बलोलो स्टेशन

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मूसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
1: Radio Musti।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तबाही फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक और अभी के लिए तो कह सकते हैं मूवी का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. तबाही क्या हो गया टॉक्सिक के साथ. उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी लेकिन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई ये फिल्म. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्म दृश्यम की और दृश्यम के तीसरे भाग दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर गोवा में खास इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया. इस मौके पर फिल्म के मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर ने शिरकत की. इनके अलावा फिल्म के नए किरदार के साथ जुड़े जयदीप अहलावत भी इस खास मौके पर नजर आए. जयदीप फिल्म में एसपी क्राइम ब्रांच ऑफिसर राजीव सिंह तोमार के किरदार में नजर आएंगे. वहीं प्रकाश राज भी फिल्म में वकील का किरदार निभाते दिखेंगे. हालांकि वो इस इवेंट में शामिल नहीं हुए और इस फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. ये 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी. सो वेल आपको बता दें दैट ट्रेलर लॉन्च के दौरान जयदीप अहलावत ने फिल्म में अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने को लेकर कुछ खास बातें कही. जयदीप ने साफ किया कि वो अक्षय खन्ना की जगह नहीं आए हैं बल्कि फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल नया है. जयदीप ने कहा कि जब मैंने कहानी सुनी थी तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं अक्षय की जगह आया हूँ. वो किरदार खत्म हुआ है और हमारी जर्नी बिल्कुल नई है. मेरा एकदम नया इंट्रोडक्शन होगा और मीरा और उसकी फैमिली के साथ नया रिलेशनशिप भी इसमें बनेगा. सो ये देखना होगा कि अक्षय खन्ना ने तो इस किरदार को बाखूबी निभाया था लेकिन अब जो जयदीप अहलावत किरदार निभाने वाले हैं अब वो कितना इम्प्रेसिव लगता है लोगों को. एंड वी ऑल नो दैट ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. सो ये तो हम जानते हैं कि वो तो इस रोल में अपनी जान ज़रूर डालने वाले हैं लेकिन दृश्यम यस अब इस कैरेक्टर को देखने के लिए, इस मूवी को जीने के लिए हमें देख करना होगा. 2 अक्टूबर तक का इंतज़ार. 2 अक्टूबर इस फिल्म के साथ ये डेट बहुत ही

अच्छे से जुड़ी हुई है. एंड वी ऑल नो, जिन्होंने भी दृश्यम देखी है सो वो जानते हैं 2 अक्टूबर, यस, इस फिल्म के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, ये जो डेट है काफ़ी जुड़ी हुई है. सो अब ये फिल्म जो है उसके लिए भी उन्होंने यही डेट सेलेक्ट की है. सो 2 अक्टूबर 2026 रिलीज हो रही है दृश्यम द कंक्लूजन. So for now we have this gana from Drishyam 2 aap sabhi ke liye jo hamara saath dete hain. Bas aise hi saath rahenge, aise hi gaanon ko enjoy karenge, V Town ki updates aap tak pahunchate rahenge. Afternoon time, Wednesday ki dopahar, connected hain aap RM2 Radio Masti ke saath, and main hoon pari aapke saath din ke 4 baje tak.

0: to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
4: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें विदिमा से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी. सभी को नमस्कार. भारत सरकार डिजिटल परिवर्तन में कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का सहयोग कर रही है. इस सहयोग के मुख्य पहलुओं में से एक कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है ताकि उन्हें नए उपकरणों और उपकरणों के उपयोग के लिए तैयार किया जा सके. अक्टूबर महीने से ही उनके लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा. ये उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में विभिन्न बंदरगाह संचालन गतिविधियों का अभ्यास करने की अनुमति देगा. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके कौशल को मजबूत करना और उन्हें बंदरगाह क्षेत्र में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना है. शागस मामले में एक नया विकास सामने आया है. मालदीव्स ने लंदन से द्वीप समूह की संप्रभुता पर चर्चा फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है. यह अनुरोध कल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्वारा नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से किया गया. लंदन ने उन्हें जवाब दिया है कि ये मुद्दा मॉरिशस के साथ उसके संबंधों के दायरे में आता है और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत कल फिर से शुरू होनी है. आज बियनोर पेलावाल की मृत्यु की 162वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. मॉरिशस के इस महान संत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सेंट क्वा में कई विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं. कल शाम दिए गए अपने संदेश में मोंसिग्नियर जो मिकाएल जुरो ने बियनोर पेलावाल का अनुसरण करते हुए सबसे कमजोर लोगों के दुखों और उम्मीदों को सुनने का आह्वान किया है. और विदेश में नेपाल में भयावह बाढ़ के 14 दिन बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी है. अब बचाव दलों का सबसे बड़ा ध्यान 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे दर्जनों कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
6: Bombay Talkies.
0: Radio Musty.
3: Radio Musty.

0: Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: यहां पर ट्रैफिक अपडेट्स आप तक हम पहुंचाएं दैट मेजर एक्सीडेंट हैज बीन रिपोर्टेड एट पोर्ट लुइस. सो अगर आप आ रहे हैं फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स पोर्ट लुइस, अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर रास्ता ब्लॉक है. अगर आप नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहे हैं क्रॉसिंग थ्रू कोडॉन, तो यहां पर भी रास्ता पूरा ब्लॉक है. और द ऑफिशियल्स दे आर ऑलरेडी एट द साइट एंड आपको बता दें दैट अगर आप वहां से गुजर रहे हैं, अगर आप ले सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव लेन तो आप प्लीज लें. अगर आप रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पर हैं, आप ब्लॉक्ड हैं, इफ देयर इज एनी अपडेट्स आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सो 5499-1294 इज द नंबर. मेजर एक्सीडेंट रिपोर्ट किया गया है एट पोर्ट लुइस और दोनों रास्ते आने जाने वाले दे आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड. सो अगर आप वहां से जा रहे हैं पेशेंस एंड इफ यू हैव एनी मोर अपडेट्स यू कैन अपडेट अस ऑन 5499-1294.

सो वेल मेजर एक्सीडेंट पोर्ट लुइस पर, और वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं यानी कि अगर आप कोडों से पोर्ट लुइस अक्रॉस होकर साउथ की तरफ जा रहे हैं या फिर साउथ से आ रहे हैं नॉर्थ की तरफ, सो पोर्ट लुइस में दोनों ही लेन्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हैं एंड वहाँ पर ऑफिशियल्स ऑलरेडी देयर और आगे के जो भी अपडेट्स हैं आप तक पहुँचाएंगे. एंड अगर आप उस रास्ते पर हैं, इफ़ यू हैव एनी अपडेट्स यू कैन ऑलवेज सेंड अस ऑन 5499-1294. अभी के लिए आप कनेक्टेड हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. एनी messages, any updates, that's our number 5499-1294.

0: Oldies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, इट्स 3:47, आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती, एंड इट्स टाइम आपके कुछ मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294. सो यहाँ पर ऑल द वे फ्रॉम लाल माची दावसेन हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू हमेशा आपके स्वीट मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं, एंड इट मीन्स अ लॉट. सो यहाँ पर जो गाना है होगा आपके लिए, एंड बहुत सारी गुड विशेज आपके नाम. हैव अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ. ललिता जी साथ दे रही हैं आप भी, और बैक फ्रॉम स्कूल एंड एंजॉइंग द प्रोग्राम. अपने गर्मा गर्म कॉफी गातो पीमा आपने ले लिए है, और साथ ही साथ यहाँ पर वी हैव सम ब्यूटीफुल बॉलीवुड सॉन्ग्स आपको एंटरटेन रखने के लिए. सो गाना गुजार फॉर कुमारी, सरोज, गीता, ज्ञानती, विना, और साथ में है संजय, विजय एंड जीतन परिवार, कुमार, देवीचन, पेई वैसे आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो थैंक यू फॉर फुल फैमिली हम डेडिकेट कर रहे हैं अगला गाना, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. और चलिए यहाँ पर अनुराधा जी हमारा साथ दे रही हैं आप ऑन रेडियो मस्ती, और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर बेटी मीता. शी इज इन फ्रांस एंड शी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज, सो उनके लिए स्पेशल विशेस फ्रॉम डियरेस्ट मामा, जो उनके लिए पहुंचा रही है बहुत सारा प्यार. चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ, और साथ रहेगा आपका और मेरा दिन के 4 बजे तक.

एंड वेल विजया जी हमारा साथ दे रही हैं आप भी. यस धुरंधर क्या करें, इस फिल्म के साथ एक अलग सा कनेक्शन बना हुआ है. एंड लाइक मी से कि अक्सर हम कहते हैं दैट जब रीमिक्सेस आते हैं तो जो ओरिजिनल गाने का फ्लेवर है वो हमेशा अफेक्ट होता है. लेकिन धुरंधर में कुछ ऐसे गाने आए जिन्हें हमने एज रीमेक्स एंड एज रीमिक्सेस सुना. लेकिन आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू द म्यूजिक डायरेक्टर एंड हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिविटी. जितनी बार इन गानों को सुनते हैं लगता है कि बस एक नया टच मिला है. It has always enhanced the original गाना. So बस इन गानों को हमारे listeners तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. विजया जी थैंक यू दिल से आप जो हमेशा हमारा साथ देती है. मॉर्निंग से नाइट हमारे जितने listeners हमारे साथ जुड़े रहते हैं बस आपके लिए बहुत सारा प्यार. It's 3:52. थोड़ी ही देर में it will be time to say goodbye. लेकिन अभी के लिए we have this गाना. Enjoy this one.

And well, so अभी के लिए it's time for Pari to say goodbye. It's 3:56 and signing off with this beautiful track. और इसी गाने के बाद बस आप समाचार सुन पाएंगे. उसके बाद आ रही है गिनीशा लेकर और रफ्तार वाइब्स. उनका साथ निभाइए ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती. मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: आइए सुनते हैं समाचार विदिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। आज दिन के दौरान पोटलुई में एक सड़क दुर्घटना पेश आई। इसमें चार वाहन संलग्न हैं। दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम पैदा हुई है। अधिक जानकारी हम आपको अपने अगले बुलेटिन में देंगे। भारत सरकार डिजिटल परिवर्तन में कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का सहयोग कर रही है। इस सहयोग के मुख्य पहलुओं में से एक कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है, ताकि उन्हें नए उपकरणों और उपकरणों के उपयोग के लिए तैयार किया जा सके। अक्टूबर महीने से ही उनके लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। शागस मामले में एक नया विकास सामने आया है। मालदीव्स ने लंदन से द्वीप समूह की संप्रभुता पर चर्चा फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध कल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्वारा नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से किया गया। लंदन ने उन्हें जवाब दिया है कि ये मुद्दा मॉरिशस के साथ उसके संबंधों के दायरे में आता है और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत कल फिर से शुरू होनी है। और विदेश में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के कुछ सामानों पर नए आयात प्रतिबंधों और 50% टैरिफ की घोषणा की है। ये कदम ओटावा द्वारा अमरीकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लागू किए जाने से ठीक एक दिन बाद उठाया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Raftar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2.

0: radio must be.
1: North, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Musty, your number one Balalot station.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides.
1: RM2.
3: Well guys, check your time. Studio ki ghari mein exactly 4:06 ho chuke hain. Wishing all of you a very good afternoon. Namaskar aur Ganesha ka pranam. Swagat hai aap sabhi ka right now in this beautiful show jiska naam hai Raftar Vibes, your filmy rides, jahan pe har afternoon 4 to 7 baje hum aapko leke jate hain filmy rides par kuch aise gine chune nagmon ke saath. So just stay tuned and stay connected. Aur Radio Masti ke saath aap sun rahi hain Raftar Vibes. Aur dosto, is waqt ek bahut hi important message hame aap tak pahunchana hai. Jo listeners घर की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस से निकल चुके हैं, सो प्लीज़ मेरी बात जो है ना ध्यान से सुन लीजिए. ड्राइव केयरफुली, आराम से आप गाड़ी चला लेना. एंड कुछ देर पहले एक सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ था एट प्लानुजान पोर्टवेज. तो इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि हम सब अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें. और रोड पर सिचुएशन अनप्रडिक्टेबल हमेशा होते हैं और वो हो भी सकता है, इसलिए प्लीज़ एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो स्पीड जो है कंट्रोल में रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अननेसेसरी ओवरटेकिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए. ट्रैफिक स्लो है तो पेशेंस रखिए और जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में आप ज़्यादा गाड़ी को तेज़ नहीं भगाना, रफ्तार को थोड़ा कम कर लीजिए. लेकिन सेफली आपको घर पहुंचना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमेशा की तरह. सो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर ड्राइव मत कीजिए. मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया के लिए गाड़ी साइड में सेफली पार्क करके ही आप अपना फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप टायर्ड हैं, सो स्ट्रेस्ड है या आपको लग रहा है कि कंसंट्रेशन कम हो रहा है, सो प्लीज़ थोड़ा ब्रेक लीजिए. एंड थकान में ड्राइविंग भी डेंजरस हो सकती है, सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली. घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है एंड वी आर हियर टू गिव यू द गुड कंपनी. सो ड्राइव सेफली, स्टे कनेक्टेड ऑन RM2 रेडियो मस्ती एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

मूड थोड़ा लो है तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब आपके स्पीकर से एनर्जी का लेवल होने वाला है डबल मेरी जान। सो यू आर लॉक इन टू रफ्तार वाइब्स गणेशा के साथ, जहां म्यूजिक है फ्रेश, वाइब है बिल्कुल क्रेजी और एनर्जी है फुल ऑन मस्ती के साथ। सो चाहे आप ऑफिस से घर जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या बस अपने रूम में चिल कर रहे हो घर पे, सो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि लेकर आई है आप लोगों के लिए एक गेम, बिकॉज रेडियो मस्ती के साथ वाइब रुकनी नहीं चाहिए मेरी जान, यानी कि आई हैव गॉट यू अ गेम राइट नाउ। सो जी हाँ, ग्रैब योर मोबाइल और अभी जस्ट बी रेडी टू सेंड मी द राइट आंसर ऑन 54991294 पर 5499124। जी हाँ, यू आर विनिंग टू टिकट्स राइट नाउ राइट अवे ऑन रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास दो टिकट है वर्थ 1400 रुपीज, यानी कि दो टिकट, एक टिकट का वैल्यू है 700 रुपीज। सो दो टिकट्स 1400 रुपीज स्पेशली फॉर यू टू गो एंड वॉच द सियाक अशिल जावता। यस, यू कैन एंजॉय द सर्कस। सो यू जस्ट हैव टू टेल मी ऑन विच टू वीक डेज आर द सियाक अशिल जावता परफॉर्मेंसेज हेल्ड एट 5:30 PM। इस हफ्तों हमारे पूरे हफ्ते में सिर्फ दो दिन ऐसा है जहाँ पे सर्कस पे, यानी कि सियाक अशिल जावता में, जो उनके परफॉर्मेंसेज 5:30 PM शाम को शुरू होते हैं, वो दो कौन से दिन हैं। And you just have to send me the right answer on 5499124 per on which two weekdays are the Siak Ashil Zavata performances held at 5:30 PM. 5499124, full name, full address ke saath, then only you're going to be eligible to participate in the game. Best of luck to you, my dear. Aur filhaal ke liye lekar aaye hain kaisa gana, jo muh mein pani lekar aayega sunte hi. If you're having your garma garam chai, garma garam कॉफी पी रहे हो, अगर उसके साथ पकौड़े हो जाए और सम चटनी, आए हाय मेरी जान।

baby, baby.

0: Such a beautiful track in the lovely voices of Sukhvinder Singh and Alka Yagnik, Ramda Jogi, especially for you, taken from the movie Taal, Hanji Jun 1999 mein release hui thi, but still very fresh to hear na on RNT Radio Masti. It's Megan Isha jo aapka saath de rahi hai in your Raftaar vibes. थैंक यू जी, थैंक यू. बस यूं ही साथ देते रहना और खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में. एंड ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली बाबा, आराम से गाड़ी चलाना. मस्त म्यूजिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जस्ट चिल. हाँ जी, और फिलहाल के लिए चलिए, थोड़ी देर पहले हमने पूछा था एक सवाल जहाँ पे सही जवाब देने पर यू कैन विन टू टिकट्स टू वॉच सियाकाशिल ऑफ जवाटा. हमने पूछा था एक सवाल, ऑन विच टू वीकडेज आर द सियाकाशिल जवाटा परफॉर्मेंसेज हेल्ड एट 5:30 PM. And the right answer is Thursday and Friday. Yes, Thursdays and Fridays को दो shows होते हैं और वो shows होते हैं जो 5:30 PM शुरू हो जाते हैं. So आज का lucky winner है जो हमारे lucky draw में नाम निकल आया है, वो है करिश्मा कुंजल. So congratulations to you, आज का lucky winner करिश्मा कुंजल रहती है हमारे सलमान मोगी पार्क न्यू ग्रोव में. So congratulations to you my sweetheart, you are just winning two lovely tickets to watch the circus. And just remind you that जी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए और कुछ लोगों ने गलत जवाब दिए, लेकिन only one lucky winner which is करिश्मा कुंजल. So congratulations to you my sweetheart, you've just won two tickets to see Exavata. So get ready for an unforgettable experience Bharawa with magic thrills, loft, a spectacular circus performance for the whole family. So catch a CX Zavata at Bagatelle. We have shows every Thursdays and Fridays at 6 PM, Saturdays and Sundays at 2:30 PM and 5:30 PM. Bookings ke liye, information ke liye, aap phone kar sakte hain 5250-9413-5250-9413 CX Zavata. Don't miss the magical big show. Yes, there will be someone calling you, Karishma, to let you know how you can grab your tickets. Once again, congratulations to you.
1: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et un bon spectacle cirque extraordinaire. Tous les jeudis et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et bonne l'école, compagnie et bon groupe, nous pas fin oublier eux. Nous avons un package spécial pour eux avec bon spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place, achetez à la même, l'eau 50-50-94-13.
2: Raftaar Vibes Filmy Rides
3: RM2

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Radio Musty.
3: Des projets plein la tête? Avec la Sicom My Speedy Loan, prenez les devants pour faire de votre envie une réalité, telle que l'achat ou la rénovation de votre chez vous, de voyage ou le financement des études des enfants, ou encore de s'offrir une nouvelle voiture avec la Sicom. Dès aujourd'hui, vous pouvez prendre un prêt d'un maximum de 300 000 roupies sans garantie et donner un nouveau souffle à vos projets avec la Sicom My Speedy Loan. Offre uniquement pour les fonctionnaires, les employés des organisations para-étatiques et les pensionnaires de la Sicom. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 200 384 70 ou visitez notre site web sicom.mu.
4: Sicom Group, a lifetime commitment.
3: Sicom Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
2: RM2 Radio Musty.
5: Set your day every single day. Best mix of music. Radio Musty Sundera.
6: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
7: Sports News.
2: Radio Musty in the mix.
8: थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज़ योर रेडियो पार्टनर. चेक योर टाइम स्टूडियो की गर्मी 4:41 हो चुके हैं. स्पोर्ट्स गुरु ऑल सेट फॉर योर लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद. सो व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट?
9: चैंपियंस लीग का लीग स्टेज शुरू हुआ. प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला दोनों की जीत हुई. रियल मैड्रिड भी अपना मैच जीत पाया. पोर्टो 0 मैनचेस्टर सिटी 2. दोनों गोल सेकेंड हाफ में अर्लिंग अलोन ने स्कोर किया. मैनचेस्टर सिटी की टीम में युवा खिलाड़ी अयूब बुआदी का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा. केवल 18 साल का है पर मिडफील्ड का माएस्ट्रो दिखता है. क्लब ब्रुज 2 एस्टन विला 3. मैकगिन, बुएंजिया और जैक्सन स्कोर कर पाए. रियल मैड्रिड के लिए एम्बापे और वाल्वेर्डे स्कोर रहे. सभी नतीजे AK Athens 1 LASK 0. Club Brugge 2 Aston Villa 3. Borussia Dortmund 3 Villarreal 2. Lille 2 Betis Seville 3. Porto 0 Manchester City 2. Real Madrid 2 Inter Milan 1. आज के मैच Barcelona का मुकाबला Feyenoord से होगा. Stuttgart Viking लिवरपूल अपने Anfield Road में होगा Atletico Madrid के खिलाफ. Napoli Arsenal. पारी सेंट जर्मे डिफेंडिंग चैंपियन पारी सेंट जर्मे स्लोवान ब्रातिस्लावा का स्वागत करेगा स्पोर्टिंग गलातासराय. और कल के मैचों में मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा साबा टीम के खिलाफ. साबा की टीम अज़रबैजान की टीम है, पहली बार चैंपियंस लीग में खेल रही है. इंग्लैंड में काराबाओ लीग कप में कल बोर्नमुथ की जीत हुई 4-0 से लिंकन सिटी के खिलाफ. क्रिस्टल पैलेस ने भी अपना मैच जीता 3-0 से मिडल्सब्रो के खिलाफ. लेटन ओरिएंट 1 ब्रैडफोर्ड सिटी 3. सन्डरलैंड 1 हल सिटी 0. मिलवॉल 0 न्यूकासल यूनाइटेड 1. विलॉक का गोल द मैगपाइज के लिए. आज इसी प्रतियोगिता में काराबाओ लीग कप में चेल्सी खेलेगा लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में ब्लैकबर्न 1 शेफील्ड यूनाइटेड 2. कार्डिफ 1 स्टोक सिटी 1. साउथहैम्पटन ने 3-1 से स्वानसी सिटी को हराया. वाटफोर्ड 2 प्रेस्टन नॉर्थ एंड 1. रेक्सम 1 बर्नले 1. बोल्टन 2 वेस्ट हैम यूनाइटेड 3. वेस्ट हैम यूनाइटेड इस लीग चैंपियनशिप में अभी पहले पोजीशन पर हैं. बानोदो की शॉर्टलिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के साथ जूड बेलिंगम, डेक्लन राइस भी हैं. साथ में लियोनेल मेसी और वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन की टीम से 6 खिलाड़ी हैं. लामिन यमाल, फेरान टोरेस, पोल कुबासी, फिर कुकुरेला, रोड्री, फाबियन रुइज. नोमिनीज में डेम्बेले, ब्रूनो फर्नांडेस, गैब्रियल, अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे भी हैं. इस साल फेवरेट हैं हैरी केन, पर वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम स्पेन से रोड्री या फाइनलिस्ट मेसी भी हैं. टेनिस, यूएस ओपन में सेमीफाइनल में पहुंची अरीना सबालेंका 7-6, 3-6, 7-6 से सबालेंका ने नोस्कोवा को हराया। लड़कों में चाफोए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ। आज क्वार्टर फाइनल में जेंग रिबाकिना, अगर रिबाकिना जीतती है तो वो वर्ल्ड नंबर वन बन जाएगी। मीरा अंद्रीवा का मुकाबला कोको गोफ से है। और क्रिकेट में विमेंस एशिया कप में कल बांग्लादेश ने यूएई को हराकर टीम इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच बुक किया। मतलब सेमीफाइनल कल बांग्लादेश वर्सेस इंडिया और फ्राइडे यानी परसों पाकिस्तान खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ। और मॉरिशस में क्रिकेट आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का फाइनल इस संडे को ही है। इस पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। आई विल कैच यू वेरी सून। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय।
8: थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर ऑल दीज अपडेट्स एंड आई विल कैच यू टुमारो मॉर्निंग।
6: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट।

0: 92.2 रेडियो मस्ती
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: RM2।
2: जब भी मैं आती हूँ हमेशा करोजी करोजी यानी कि ढेर सारे गिफ्ट लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। दिस इज द मैजिक हैपनिंग राइट नाउ आपके और हमारे बीच में ही है इन योर रफ्तार वाइब्स एंड दैट्स योर फिल्मी राइड्स। खूबसूरत बॉलीवुड का गानों का सिलसिला तो चलता ही रहता है लेकिन गेम का सिलसिला भी बहुत जरूरी होता है। अभी के लिए आई गॉट अनदर गिफ्ट फॉर यू। सबसे पहले मेरी ये बात सुन लीजिए कि अभी के लिए आप मिस मत करना द बिगेस्ट क्रिकेटिंग जो शो डाउन है ऑफ द ईयर आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 The grand finale on Sunday 13th of September SSR National Cricket Ground mein Atmapu and the match shuru ho jayega subah ke 10 baje organized by Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo and co-sponsored by MYOP MYOP. So this thrilling season kick off kiya hai on the 1st of August with six power pack teams yani ki Continental AMG AWP Campus Abroad One Health Thomas Cook. So join us live at the ground for a day full of high energy cricket, fun and excitement. Agar aap cricket ke diwane hain, so why not? You can come and cheer for your favorite team, enjoy great food and music and even stand a chance to win exciting gift vouchers there. All while Radio Masti goes live from the ground from 11 a.m. to 2:30 p.m. Ji haan dost, Sunday hamara team wahan pe maujood hoga and well, so many giveaways, so many gifts to give to you. So aapko kya करना है आप वहां पे जाइए चिल कीजिए एंजॉय कीजिए एंड सपोर्ट योर टीम। लेकिन अभी के लिए ऑन रेडियो मस्ती आई हैव अ वाउचर फॉर यू। अगर आप इंडियन फूड खाना पसंद करते हो डू यू लव इंडियन फूड ₹500 का गिफ्ट वाउचर है ऑफर टू यू फ्रॉम सैफरन ग्रिल एंड यस इट कुड बी योर्स राइट नाउ। जस्ट प्ले नाउ एंड विन अ डेलिशियस इंडियन मील। हम आपको सुनाएंगे एक डायलॉग आपको बस पहचानना है और मुझे बताना है ये कौन सी मूवी से लिया गया है।
3: अच्छा ये मजान अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ।
4: फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा।
3: मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो।
4: अच्छा ये बताओ तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है?
3: एक और काम
5: ये तो मैं हरगिज नहीं करूँगा।
3: मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा।
4: नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे।
3: तो
4: ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा।
2: आपको बस पहचाना है और मुझे बताना है कि ये जो डायलॉग है कौन से मूवी से लिया गया है। 5499-1294 फुल नेम फुल एड्रेस एंड द राइट आंसर सेंड इट टू मी राइट नाउ राइट अवे एंड यस यू कैन पार्टिसिपेट इन द गेम एंड हो सकता है कि आज लक ने अगर आपका साथ दिया सो यू कैन विन अ वाउचर वर्थ ₹500 ऑफर टू यू बाय सैफरन ग्रिल। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू।
0: RM2 Radio Masti

0: ट्रैफिक अपडेट। तो चलिए जी टू ऑल दोस्त जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन बोर्ड, जहां पे गिनीशा साथ दे रही है इन योर लवली शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स। सो माय डियर, ये है आपका ट्रैफिक अपडेट। और इस वक्त रोड्स पर इवनिंग पीक ट्रैफिक काफ़ी हैवी चल रहा है। सबसे पहले पोर्ट लुइस प्लेन लुजॉन एरिया में अर्लियर रिपोर्ट की गई एक मेजर एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट है। नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दोनों डायरेक्शंस में हैवी ट्रैफिक जाम रिपोर्ट हो रहा है। इस रूट पर ट्रैवल करने वाले जितने भी हमारे मोटरिस्ट हैं, प्लीज़ एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट डिलेज और पॉसिबल स्लो मूविंग ट्रैफिक। और गेजवी से फिनिक्स की तरफ भी ट्रैफिक हैवीली कंजस्टेड है। और आई कैन सी फिनिक्स से साउथ बाउंड साइड पर भी ट्रैफिक स्लो मूविंग है। क्यूपिप में ट्रैफिक फिलहाल स्लो मूविंग है। और रोजिल से कैट्रबोन के यूजुअल बिजी कॉरिडोर पर पीक आवर ट्रैफिक के साथ हैवी कंजेशन देखने को मिल रहा है दोस्त। वेडर साइड पर भी हैवी ट्रैफिक जाम, वेरी स्लो मूविंग है। सो मोटरिस्ट ट्रैवलिंग थ्रू दैट एरिया शुड अलाउ एक्स्ट्रा टाइम। जी हाँ दोस्तों, और आज इवनिंग रश में प्लीज़ एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम अलाउ करें। अननेसेसरी ओवरटेकिंग और लेन जो चेंजिंग है अवॉइड करें। सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस मेंटेन करें और एक्सीडेंट अफेक्टेड एरियाज में पेशेंस रखें प्लीज़। अगर पॉसिबल हो लेस कंजस्टेड ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है कंसिडर कर सकते हो आप, लेकिन रेजिडेंशियल रोड्स को अननेसेसरी ब्लॉक ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं फ़ोन यूज़ मत करें। ट्रैफिक अपडेट के लिए अपने पैसेंजर से चेक करवाएं। रोड्स बिजी हैं, सो स्टे काम, स्टे अलर्ट एंड ड्राइव सेफ। ये था आपका इवनिंग ट्रैफिक अपडेट। मॉरिशस के रोड्स पर सफर करते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखें, क्योंकि आज पीक आवर में डिलेज एक्सपेक्टेड है। सो ड्राइव सेफ माय डियर लवली लिसनर्स। एंड कोई भी ऐसे आपके पास अगर कोई अपडेट है ट्रैफिक को लेकर, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे, यू फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अदर ड्राइवर्स टू नो, सो डू लेट अस नो ऑन 5499-1294 पर। सो ड्राइव सेफली एंड एंजॉय द राइड।
1: RM2 Radio Mastery.

0: इसमें तो कोई शक नहीं है, इट्स योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन अक्रॉस द आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे आप लोगों के लिए, टू ऑल आवर डियर लवली लिसनर्स जो सात समुद्र पार से भी हमारा साथ दे रहे हैं। हम आपको नहीं भूले ऐसा ही कुछ समझे ना कि गिनी लेकर आई है, सारे के सारे गाने आपके नाम और बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं 5491294 पर 99924 एंड आस्किंग फॉर अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, यानी कि गणेश चतुर्थी इज वेरी क्लोज। बिल्कुल जी, अभी प्ले करते हैं, आप लोगों ने मांगा और हम प्ले ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन, यानी कि आप मांगोगे तो दीजिए, आपकी ख्वाहिश आपकी फरमाइश सर आंखों पर। सो गणेश चतुर्थी का जो सेलिब्रेशन है बिल्कुल करीब आ गई है मेरे जानो, और हर घर में प्रिपरेशंस जो है फुल स्विंग में चल रही है। सो कहीं बप्पा के वेलकम की तैयारी हो रही है, कहीं डेकोरेशंस, मोदक और प्रसाद बिल्कुल बनने वाले हैं, और सबके दिल में एक ही एक्साइटमेंट है, बप्पा आ रहे हैं घर। बिल्कुल, तो आप भी अपने प्रिपरेशंस के साथ रेडियो मस्ती को रखिए अपने साथ, बिकॉज जब बप्पा आते हैं ना तो सिर्फ घर नहीं दिल भी खुशियों से भर जाते हैं। और इस फेस्टिव मूड को और स्पेशल बनाने के लिए अब वक्त है एक ब्यूटीफुल गाने का, तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, फील द फेस्टिव वाइब्स। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया बोलते बोलते ये गाना आप एंजॉय कीजिए, एंड हियर कम्स अदर लाइक सॉन्ग स्पेशली फॉर यू इन योर रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती। सारे बप्पा के जितने भक्त हैं ये आपके नाम।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: बिल्कुल जी, साथ में मिलके बोले गणपति बप्पा मोरिया। और फिलहाल के लिए हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:39 हो चुके हैं। और फिलहाल के लिए एक सूचना है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से सुने। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की तरफ से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्लेन विलियम्स और मोका डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में थर्सडे यानी कि 10 सितंबर को और फ्राइडे 11 सितंबर 2024 को पानी की सप्लाई इरेग्युलर रहने की संभावना है। अफेक्टेड एरियाज हैं लामारी, कांडोस, वाक्वा, फिनिक्स, क्यूपिप, फॉरेस्टसाइड, फ्लोरियल, सेंट पियर और मोका। ये इंटरप्शन मारोवाक्वा रिजर्वर में इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस वर्क्स की वजह से होगा और ज़रूरत पड़ने पर वाटर टैंकर्स कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। CWA इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए CWA हॉटलाइन पर आप फ़ोन कर सकते हैं, विच इज़ 170 170। थैंक यू सो मच।
3: Raftar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2.

0: ऑलराइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।

0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: नॉट लिसनिंग टू
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: नॉट लिसनिंग
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: ओके आई एम नॉट विद
0: हर। तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके दैट्स इट।
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: OMG फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
4: कैसा लग रहा है आपको ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन? सो ऑल आवर ड्राइवर्स जो ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, जहां दोस्तों लेकर आए हैं इन योर रफ्तार वाइब्स कुछ गिने चुने नगमे। एंड आई रियली होप कुछ गाने ऐसे होंगे जो आपको वाकई दिल से अच्छा लग रहा है और आप भी गुनगुना रहे हैं हमारे साथ। और फिलहाल के लिए चलिए जी, लेट्स गो फॉर सम लेटेस्ट फैशन टिप्स। गणेश चतुर्थी इज वेरी क्लोज, उसके लिए सारी लुक रखो एलिगेंट लेडीज, फेस्टिव और थोड़ा ग्लैम भी है, वैसे कि ब्राइट शेड्स जैसे कि पिंक होते हैं, फिशा होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, येलो, ऑरेंज, लाइक जैसे लाइट सेक्विन एम्बेलिश्ड साड़ी जो होता है फेस्टिव वाइब के लिए परफेक्ट होता है। लुक को स्टेटमेंट इयररिंग्स, बैंगल्स और स्मॉल बिंदी के साथ कंप्लीट करो और अपना गजरा बिल्कुल ना भूलना। हील्स या एम्बेलिश सैंडल्स पे रखो और मेकअप सॉफ्ट रखो विद ग्लोवी स्किन एंड बोल्ड लिप्स। फाइनली कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज योर बेस्ट एक्सेसरीज, सो नॉट टू फॉरगेट टू वेयर योर कॉन्फिडेंस।
3: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Bikul singing for people that we really love on R&T Radio. Masti, thank you so much Jisa dene ke liye. It's Meghanish on the mic. Rahenge 7 baje tak. Filhal ke liye, yes, you just have to check your time kyunki hamare studio ki ghari mein it's exactly 6 p.m.
1: R&T Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सेंट ख्वा में प्रार्थना, स्मरण और भाईचारे का विशेष वातावरण रहा। पहलावाल की 162वीं पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके मकबरे पर पहुंचे। मुख्य प्रार्थना सभा में गरीबों की सहायता और अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। मॉरिशस में निवेश को रफ्तार देने और कारोबार की राह आसान बनाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लाइसेंस और परमिट जल्द जारी करने के साथ साइलेंट एग्रीमेंट का नियम लाने और सेवाओं में एआई का उपयोग करने की योजना है। और विदेश में नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद मलबे और पानी से भरी सुरंगों में लापता लोगों की तलाश जारी है। 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता। उधर बिहार के 13 जिलों में बाढ़ से 34 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। सबसे पहले ये खबर। पाए में आज दोपहर एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। हादसे में लोहे की छड़ें ले जा रहा एक लॉरी और कई अन्य गाड़ियां शामिल हैं। 9 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना दोपहर करीब 2:07 पर मेफ्लावर के पास M2 मोटरवे पर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार पोटली की ओर जा रहे लॉरी ने पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी, इसके बाद वो बीच के डिवाइडर को पार कर गया और विपरीत दिशा से आ रही अन्य गाड़ियों से भी टकराई। आखिर में भारी वाहन मोटरवे की दूसरी ओर सड़क के

0: किनारे जाकर रुका। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लॉरी में लदी लोहे की छड़ें सड़क पर बिखर गईं। इसके कारण दोनों दिशाओं में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस अभी भी स्थल पर मौजूद है। कल शाम एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेंट क्वा पहुंचे। उन्होंने 162वें वर्ष के अवसर पर बियनेरो जाक दे ज़ेरेलावाल की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वर्ष एंसेम्ब्ल अवेक पेलावाल पोर उन सोसाइटे प्लीजिस एक फ्रैटरनेल फवलावाल के साथ एक न्यायपूर्ण और भाईचारे वाले समाज की ओर विषय के साथ ये श्रद्धा और भक्ति हमेशा की तरह उतनी ही जीवंत बनी रही। कल शाम की मुख्य प्रार्थना सभा का संचालन पोटवी के बिशप द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा कि फवलावाल ने केवल गरीबों की बात नहीं सुनी बल्कि उन्होंने दूसरों के साथ ये भी विवेचन किया कि यीशु मसीह की सेवा करके उनकी सेवा कैसे की जाए। व्यापार को सुगम बनाना और सबसे बढ़कर निवेश में तेजी लाना, अधिकारी मॉरिशस में व्यावसायिक माहौल को अधिक सरल, तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए कई उपायों की योजना बना रहे हैं। प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं लाइसेंस और परमिट प्रक्रियाओं में संशोधन, साइलेंट एग्रीमेंट का सिद्धांत या फिर व्यवसायों और निवेशकों के लिए बनाई गई सेवाओं में AI का एकीकरण। अब्दुल्ला की गीता सुनारान।
1: EDB यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड इस समय कारोबार के सामने आने वाली मुख्य अड़चनों की पहचान करके उन्हें कम करने पर काम कर रहा है। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक नया बिजनेस फैसिलिटेशन बिल भी तैयार किया जा रहा है। कुछ आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी लाइसेंस की अर्जियों पर फैसला जल्दी लेने के लिए साइलेंट एग्रीमेंट व्यवस्था को भी फिर से लागू किया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कारोबार के माहौल को बेहतर बनाने और खास तौर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये कदम अहम है। अर्थशास्त्री डॉक्टर भवेश जगन्नाथ कहते हैं, मॉरिशस का उद्देश्य है वृद्धि को बढ़ाना। इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। विदेशी निवेशक आएंगे, इसके लिए हमारे यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जो व्यवसाय को आसान बनाए। तकनीक भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम यानी NELS को और मजबूत किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए साधन शामिल किए जाएंगे। इनमें कई भाषाओं में काम करने वाला चैटबॉट भी होगा जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा कई दूसरी प्रक्रियाओं को भी स्वचालित किया जाएगा। अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मॉरिशस की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। मॉरिशस के सामने कई कंपटीटर हैं जो विदेशी निवेश की तलाश में हैं, जैसे दुबई, रुआंडा, बोत्सवाना, केन्या, नाइजीरिया जो इसी मंडी में हैं। इन निवेशकों को यहां लाने के लिए हमारे पास उन्हें देने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इन सुधारों के जरिए लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बी रेडी सूचकांकों में मॉरिशस की स्थिति और बेहतर हो, साथ ही देश को कारोबार और निवेश के लिए एक आकर्षक जगह के रूप में और मजबूत किया जा सके।
0: फ्लिकॉफ्लाक में मंगलवार से सिसना के क्षमता निर्माण पर 3 दिवसीय चौथा वार्षिक सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें साडेक क्षेत्र के नॉन बैंकिंग वित्तीय सेवा नियामकों के प्रमुख अधिकारी वित्तीय माहौल में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच शासन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और भर्ती चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि कल शाम एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेंट क्वा पहुंचे। उन्होंने 162वें वर्ष के अवसर पर बियनेरो जाक दे ज़ेरेलावाल की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रजनी पीकर।
2: कुछ एक फूल भेंट करने आए, कुछ लोग एक मोमबत्ती जलाने, एक प्रार्थना करने, कुछ साधारण हरकत, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही मायने रखते हैं। ये मॉरिशनों के दिल में बियनेरो पेलावाल के प्रति लगाव और गहन भक्ति दर्शाते हैं।
3: C'est un exemple qui nous suit parce que Pelaval il accomplit ce qui bon Dieu nous fait pour la terre, c'est-à-dire partage et ce qui nous n'ont et de bonnes pauvres.
4: Tous les années, moi, je passe Getli.
5: Avec qui vous êtes venu aujourd'hui?
6: Avec mon papa et ma maman et mon frère.
7: Quand la terre fait mal, quand vous êtes malade, j'allais être moi. Et ma jambe est au cœur, moi.
8: Motivé pour ma jambe aussi, pour venir avec mon papa ici.
9: Qui vous pouvez faire aujourd'hui ici?
10: Le petit n'importe quoi, pour donner la communion.
11: Bien, facile de prendre un caveau, pas que mal longtemps.

0: longtemps, tu vas dire, c'est pas sérieux.
1: इस बीच पोर्ट लुइस के बिशप की ओर से प्रमुख प्रार्थना सभा का आयोजन, गिरजाघर के अंदर हो या बाहर, श्रद्धालुओं ने ध्यानपूर्वक मोंसेइयर मिकाएल जेहोन के संदेश को सुना। अपने संदेश में पोर्ट लुइस के बिशप ने इस तीर्थ यात्रा के शीर्षक और जरूरतमंदों के प्रति पेलावाल की कटिबद्धता पर बात की।
2: Et apprendre zut langage créole. L'INSEE communique avec zut. L'INSEE écoute zut ban blessure. C'est-à-dire qu'il nous pas tendé. Et c'est ça qui perd l'aval. Au départ, peut-être c'est qu'il est tendé. Il peut guetter, il peut tendre, il peut trouver. Mais nous aussi, nous interpellés par le nombre de cas de violence à l'égard des femmes, ou bien sur la route, dans nous ban l'école, le cyberbullying, ou bien ban insulte. Les propos racistes qui des fois diffusés sur les réseaux sociaux. La drogue qui tue nos bonnes enfants et nos bonnes jeunes, qui laisse les bonnes familles dans une grande détresse. Et les bonnes paroisses des fois avec mon père, je te raconte moi l'amour des bonnes jeunes à cause de la drogue ou suicide. Depuis le début de l'année 2026 jusqu'à septembre, il y a une centaine de morts sur les routes ici.
1: उनके निधन के 162 वर्ष बाद पेलावाल आज भी लाखों मॉरिशियनों को संगठित कर रही है।
2: L'in pange zut d'abord peut-être avec zut niveau l'étude ou zut statut social, mais l'in reconnaître qu'ils zut la foi, zut fidélité et zut capacité rejoignent ban frexer ti bien grand.
1: ये उत्साह पीढ़ी दर पीढ़ी तक बना रहता है, जो याद दिलाता है कि इस पवित्र यात्रा से परे उनका हमदर्दी और भाईचारे का संदेश है।

0: राष्ट्रीय स्तर पर कैनाबिस संबंधी नीति में सुधार पर तैयार रिपोर्ट आज दोपहर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम को नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नैडक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल नायक और इसकी अध्यक्ष नाद्या पिरन ने सौंपी। दोनों अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट व्यापक बहुआयामी और समावेशी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है। देश भर में आयोजित व्यापक परामर्श के दौरान 1800 से अधिक सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिससे आम जनता और विभिन्न साझेदारों को अपनी राय रखने का अवसर मिला। ये रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा कई मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मॉरिशस के लिए ऐसी जिम्मेदार, सुसंगत और देश की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नीति तैयार करना है। इस दस्तावेज की जल्द ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के सदस्यों द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के बाद कुणाल नायक ने चर्चा पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ नैडक के सामने आने वाली चुनौतियों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मौजूद बाधाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इन कठिनाइयों के समाधान के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन ने आज मुका स्थित अपने मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान 15 सितंबर को बॉशरी घोंबा मराठी मंडली में होने वाले गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह की तैयारियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की रूपरेखा, विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी और इस पर्व के धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। विदेश की खबरों में, नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस आपदा में 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। उधर बिहार में भी बाढ़ ने गंभीर रूप ले लिया है, जहां 13 जिलों में 34 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। आस्था गोविंदमन।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे और पानी से भरे हाइड्रोपावर परियोजनाओं की सुरंगों में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। त्रिशूली नदी के पास एक सुरंग से 2 कर्मचारियों को 9 दिन बाद जीवित निकाला गया। आपदा में 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। भारत ने राहत सामग्री के साथ बचाव दल और सुरंग विशेषज्ञ भेजे हैं। चीन, ब्रिटेन और अन्य देशों की टीमें भी अभियान में सहायता कर रही है। उधर बिहार में बाढ़ ने गंभीर रूप ले लिया है। 13 जिलों की 480 ग्राम पंचायतों में करीब 34,31,000 लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में 29 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। गंगा के साथ कोसी और गंडक सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना, भागलपुर और वैशाली सहित कई जिलों में पानी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें तैनात हैं, जबकि करीब 700 नौकाओं की सहायता ली जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और सामुदायिक रसोई भी खोली गई है।
0: गणेश चतुर्थी के साथ करीब आ रहा है विघ्नहर्ता का शुभ आगमन और इसी के साथ प्रतिमाओं में आकार ले रही है श्रद्धा और भक्ति। तमिलनाडु के विलुपुरम में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की छोटी बड़ी प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों में ये प्रतिमाएं पूजा पंडालों और श्रद्धालुओं के घरों में विराजमान होंगी।
1: मिट्टी में आकार लेती आस्था, रंगों में सजती भक्ति और शिल्पकारों के हाथों धीरे धीरे साकार होते प्रथम पूज्य भगवान गणेश। भारत के तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम में इन दिनों हर ओर गणेश चतुर्थी की तैयारियां देखी जा रही हैं। यहां छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। कहीं प्रतिमाओं पर रंगों की सुंदर परत चढ़ाई जा रही है, तो कहीं भगवान गणेश के मुकुट, आभूषण और वस्त्रों को सजाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्षण नेत्रों को आकार देना होता है, क्योंकि आंखें बनते ही मानो प्रतिमा में एक नई भाव भंगिमा उभर आती है। इस कार्य में पुरुषों के साथ महिला शिल्पकार भी पूरे मन और श्रद्धा से जुटी हैं। उनके हाथों की सफाई, रंगों का सही मेल और छोटी से छोटी बारीकी पर दिया गया ध्यान हर प्रतिमा को एक अलग पहचान देता है। विलुपुरम में गणेश प्रतिमाएं बनाने की ये परंपरा 37 वर्षों से चली आ रही है। समय के साथ प्रतिमाओं के आकार, रंग और सजावट में बदलाव आया, लेकिन शिल्पकारों की भक्ति आज भी वैसे ही बनी हुई है। उनके लिए ये केवल कला या आजीविका नहीं बल्कि भगवान गणेश की सेवा और उपासना भी है। जल्द ही ये प्रतिमाएं पूजा पंडालों और श्रद्धालुओं के घरों की शोभा बढ़ाएंगी। विघ्नहर्ता के आगमन के साथ हर ओर सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी और वातावरण गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से गूंज उठेगा।
0: मासूम आँखें, प्यारी सी चाल और गंध पहचानने की अद्भुत क्षमता, बेंगलुरु का स्टार्टअप डॉग्नोसिस अब प्रशिक्षित कुत्तों की सहायता से कैंसर की शुरुआती पहचान का नया तरीका विकसित कर रहा है। ये कुत्ते व्यक्ति की सांस में होने वाले उन छोटे बदलावों को पहचानना सीख रहे हैं जो बीमारी का संकेत हो सकते हैं।
1: मासूम आँखें, प्यारी सी चाल और हर नई गंध को पहचानने के लिए हमेशा तैयार नाक मनुष्य के सबसे वफादार साथी अब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में भी खास भूमिका निभा सकते हैं। बेंगलुरु का स्टार्टअप डॉग्नोसिस से इन कुत्तों की अद्भुत सूंघने की क्षमता का उपयोग कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए कर रहा है। इन्हें व्यक्ति की सांस में होने वाले उन छोटे बदलावों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो बीमारी का संकेत हो सकते हैं। ये जाँच आसान, कम खर्चीली और बिना दर्द के हो सकती है, हालांकि उनके इस्तेमाल से पहले और परीक्षण जरूरी है। अपनी प्यारी हरकतों से चेहरे पर मुस्कान लाने वाले ये चार पैरों वाले साथी आने वाले समय में किसी का जीवन बचाने में भी सहायता कर सकते हैं।
0: और अब अंत में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल गीता सुनारान के साथ।
2: मॉरिशस में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी है जो कल गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू रहेगी। मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटी साइक्लोन है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवाएं चल रही हैं। देश भर में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 17 से 22 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिनके झोंके कहीं कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। आम जनता से ऊंचाइयों और सड़कों पर सावधान रहने की मांग की जाती है। लगुनों के परे समुद्र

बहुत ही खराब रहेगा। 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी जो तटों तक पहुंच सकती हैं, खासकर पश्चिम और दक्षिण में। आम जनता से इन तटों और समुद्र में न जाने की मांग की जाती है। कल सुबह 6:10 पर सूरज निकलेगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम अपर्णा को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:17 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: जय शोक समाचार सुनिए। एफनी सिटी लेन कॉमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदेव अबिलक, जो देवा नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती चांदिनी अबिलक के घर एफनी सिटी लेन कॉमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सिवसागर लेन नोटरडेम में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी देवी राजा, पैदाइशी नाम तिमल और जोफिया नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके बेटे अक्षय राजा के घर सिवसागर लेन नोटरडेम से उठाकर नोटरडेम की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30। डॉक्टर मेनिला रोड पिचिटी में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री रामनोहर, पैदाइशी नाम शीतल और जो सलोनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:00 उनके घर डॉक्टर मणिलाल रोड पिचिटी से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नंबर 172 बी एपास रे क्यूपिप रोड क्यूपिप में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमति दुमा, पैदाइशी नाम कुजो बिहारी और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1:00 उनके बेटे श्याम दुमा के घर नंबर 172 बी एपास रे क्यूपिप रोड क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 57 मामा देला मुसैन स्ट्रीट सेंट क्वा में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पावती बिजान, पैदाइशी नाम दुर्बीज और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:00 उनकी बेटी रेणुका देवी बिजान के घर नंबर 57 मामा देला मुसैन स्ट्रीट सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भोले वाली दिपैत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। सोल्फेरिनो नंबर 1 वाक्वा में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की बीबी आयसा ईडन, पैदाइशी नाम राजा और जो आयसा नाम से भी जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा कल दिन के 11:00 उनके घर सोल्फेरिनो नंबर 1 वाक्वा से उठाकर फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 11 AM। लाशापल ओडेंट एडियनसन्स बोबासे में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुमारी खुर्गधारी, पैदाइशी नाम छगनलाल और जो कुमारी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। वे लो 55 एवेन्यू रेजिडेंस ट्रियानो रहती थी। उनकी अर्थी कल सुबह 10:00 लाशापल ओडेंट एडियनसन्स बोबासा से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

RM2 रेडियो मस्ती। टाइम बीटा चला जा रहा है, 6:36 हो चुके हैं। You're listening to Radio Masti. Thank you so much जी साथ देने के लिए। 6:36 यानी कि so many here people might be here in the kitchen right now cooking है ना। So courage to you अगर आप खाना बना रहे हो। बहुत सारे लोग जो है रेडियो सुनते सुनते अपना काम कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है टाइम में कैसे बीत जाता है। तभी तो हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ऐसे गिने चुने नगमे जो सीधे आपके दिल तक हम पहुंचा दें। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर एंड ऑल दोस हु आर स्टिल ऑन द रोड ड्राइविंग। पेशेंस, आई नो पेशेंस, आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, लेकिन आपके लिए हम लेकर आए हैं खूबसूरत गानों का सिलेक्शन सो दैट हम आपका साथ दे दें जब तक कि आप

0: करना पहुंचे। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए I've got you the next one, अरिजीत सिंह की आवाज में, उनके तमाम फैंस के नाम जो साथ दे रहे हैं।
1: RM2 Radio Masti।

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: RM2 Radio Masti
1: Raftar Vibes Filmy Rides
0: RM2
2: तो चलिए जी 6:57 हो चुके हैं, आइए ये सूचना सुनते हैं, ध्यान से सुनेगा। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की तरफ से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्लेन विलियम्स और मोका डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में थर्सडे 10 सितंबर और फ्राइडे 11 सितंबर 2026 को पानी की सप्लाई इरेगुलर रहने की संभावना है और अफेक्टेड एरियाज होंगे लामारी, कौंडोस, वाक्वा, फेनिक्स, क्यूपिप, फॉरेस्टसाइड, फ्लोरियल, सैंपिया और मोका। ये इंटरप्शन जो है मोरो वाक्वा रिजर्वर में इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस वर्क की वजह से होगा। जरूरत पड़ने पर वाटर टैंकर्स कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। CWA इनकन्वीनियंस के लिए माफी चाहते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप CWA के हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं, विच इज 170-170।
1: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
2: Time check 7 PM.
0: Evening Lounge.
4: Evening Lounge.
1: RM2
0: Radio Musti.

That was Lucky Ali for you, oh Sanam, especially dedicated to all music lovers जो साथ दे रहे हैं in your evening lounge. 7:02 हो चुके हैं. Good evening जी, कैसे हो आप? This beautiful track, especially for you. फिलहाल के लिए चलिए जी, let's move on to the next one, which is in the lovely voice of Kumar Sanu. So good evening, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. थोड़ी देर में आने वाली है हमारी प्यारी दिव्या, जो वो भी फंस गई है ट्रैफिक में. Patience, without patience, पहुंच जाओगे थोड़ी देर में.

0: Such a lovely song. जी हाँ दोस्तों, especially to all our dear lovely listeners जो साथ दे रहे हैं. हो सकता है कि फिलहाल अभी भी आप काम पे हो. If yes, then courage to you, my dear. हम भी तो काम पे ही हैं आपका साथ देने के लिए. So bon courage to you and to all those जो घर पहुंच चुके हैं, थके हुए हैं. Please sit back, relax. थोड़ा सा वक्त अपने लिए जरूर निकालना and आप enjoy करना ये खूबसूरत lovely गाने जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए on our Radio Musti.
1: RM2 Radio Musti.

0: MPC-च्यावतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

इतना खूबसूरत अल्फाज कि बस ये अल्फाज हमारे दिल में जहन में उतर ही जाता है। ऐ खुदा बस जब बना उसका ही बनाना। बस हम भी यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ जो भी जिसके साथ भी दिल का रिश्ता है, आपका ये रिश्ता और भी दिन ब दिन मज़बूत और गहरा होता जाए। और चलिए उनमें से एक तो हम भी हैं और आप भी हैं, क्योंकि हम भी अपने रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बस जितोड़ मेहनत करते हैं। एक तो आप लोगों से मुलाकात करने आते हैं और दूसरी बात ये है कि हम आपके चॉइस के हिसाब से बस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं ये गाना चलाऊं वो गाना चलाऊं तो आपको कैसे लगने वाला है। और चलिए हम प्लेलिस्ट बनाते हैं तो आपको ही हम दिमाग में और दिल में बिठा कर ही रखते हैं और सोचते हैं कि आप कितना मुस्कुराएंगे जब आप हमारे गीतों को सुनेंगे। तो चलिए आपके इस मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए हम सेट हैं एंड इवनिंग लाउंज में दिव्या का साथ है टिल 9 पीएम। बिग थैंक यू टू गिनीशा जो अभी अभी यहाँ पे थी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल गाने। एंड गिनीशा इज़ ऑन द वे एंड अपनी मंजिल की ओर बढ़िए धीमी रफ्तार से एंड ड्राइव

0: safely and carefully and have a musical ride with RM2 Radio Masti. And the next track goes out specially for you, beautiful Ganesha. And साथ में आपको हम ये बताना चाहते हैं, अगर आप पोर्ट भी साइड से गुजर के आ रही है तो please, please note that वहाँ पर बहुत भारी ट्रैफिक जाम है. एक्चुअली मैं मोका की साइड बढ़ रही थी तो पोर्टरीज में भी बहुत बहुत ट्रैफिक जाम है, और जब अंदर अंदर की राह को हम ने ट्राई किया तो उधर भी देयर वाज अ ह्यूज ट्रैफिक जाम. सो प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, सो बी वेरी केयरफुल. एंड साथ में आपको हम कहेंगे स्टे पेशेंट एंड स्टे म्यूजिकल विद रेडियो मस्ती.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Masti.

0: क्या ये खुमार है शायद ये प्यार है और आपको लगता है कि शायद ये प्यार है तो इसमें आपको शायद बिल्कुल नहीं डालना चाहिए क्योंकि अगर आपके दिल को लगता है आपको प्यार है तो आपको 100% प्यार ही है. इट्स ऑलरेडी 7:41 एंड रेडियो मस्ती पर एक बार फिर से आपका स्वागत है. टू ऑल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ, दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक. चलिए कुछ आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं क्योंकि आपके बिना ये शो आधा अधूरा है एंड शो में चार चांद लगाने के लिए दिल से आपको शुक्रिया. चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर बेटी खाइरा एंड बेटा प्रयान. वॉन्ट टू विश माई लिटिल ब्रदर धीरेश दियापुल अ वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस हिम. एंड कल वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, गोइंग टू बी 18. तो एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से एंड ऑल्सो फ्रॉम दीदी क्रिस्टी निकित सिंह ऑफ रोजबेल दियापुल फैमिली ऑफ लिस्कालिया एंड ओब्रू फैमिली ऑफ रोजिल. हैप्पी बर्थडे टू माई प्रिंसेस येशनी सेलिब्रेटिंग हर 15 ईयर्स टूडे. बेस्ट विशेज फ्रॉम पापा उतानंद, मामा प्रीति, लवली सिस्टर प्रिंसा ऑफ अमोरी. और साथ में यहाँ पर किसी ने हमें कहा है नमस्ते गिनीशा जी एंड दिव्या जी, होप यू डूइंग गुड. हम दोनों बहुत ही ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. एंड गिनीशा तो अभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे एंड अभी दिव्या साथ दे रही है टिल 9 PM. राधा जी ऑल द वे फ्रॉम कनाडा कनेक्टेड हैं हमारे साथ. राधा जी आपका वेलकम है. नेक्स्ट ब्यूटीफुल सा गाना आपकी ब्यूटीफुल फैमिली के लिए इन कनाडा मॉरिशस और हमारे RM2 लिसनर्स के लिए, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. और सबको आप एडवांस में विश कर रही हैं पायस गणेश चतुर्थी. थैंक यू सो मच राधा जी एंड आपको भी बहुत बहुत सारे गुड विशेज. एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज.

0: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना और कभी शाम ढले तो आप उनको ज़रूर याद करिएगा जो आपके दिमाग और जहन में हैं। और ऐसे दिन भर जब हम काम करते हैं ना तो अपने बिजी स्केड्यूल में भी टाइम निकाल कर हम उनको याद कर ही लेते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, सो जस्ट रिमेंबर कि टाइम निकालने वाला टाइम निकाल कर ही रहता है। अगर आपको लगता है कि इस बिज़ी वाली ज़िंदगी में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो लेट मी टेल यू कि वक्त किसी के पास भी नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। और ऐसे में अगर आप अपनी इस कीमती वक्त किसी को दे रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस ऐसे ही अपनों को स्पेशल फील कराते रहिए और हम अपनी तरफ से जीत और मेहनत करेंगे और कोशिश करते रहेंगे टू मेक यू फील स्पेशल विद आवर ईच एंड एवरी गाना। तो चलिए यहाँ पर आप का एक मैसेज आया है यहाँ पर। हेलो नमस्ते जी, गुड इवनिंग टीना जी, हाउ आर यू डी एंड हाउ वाज योर डे? दिन बहुत ही बढ़िया था एंड हम भी बहुत ही ठीक हैं, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ठाक हैं और आपके प्यारे से परिवार भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट गोज आउट टू ऑल योर लव्ड वंस एंड ऑल लिसनर्स जो हमेशा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहते हैं, दैट इज़ RM2 रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच आपको टीना जी। एंड यहाँ पर आपने कहा टू सक्सीड, वर्क हार्ड, Never give up and above all, cherish a magnificent obsession. ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं ना कि you need to love what you do and you need to do what you love. अगर आपके काम में आपको passion दिखता है तो ये धीरे धीरे करके आपका प्यार भी बन जाता है और एक तरीके का एक जुनून बन जाता है जो आपकी ज़िंदगी में positive changes लेकर आते हैं। So, thank you so much. चलिए यहाँ पर बेस्ट विशेज टू डॉटर काजल फ्रॉम मामू एंड मामी इमरान एंड मामा प्रतिमा, पापा है फ्रॉम रिविया जोंपा। एंड साथ में यहाँ पर आप कहते हैं हेलो बेस्ट एफएम, एक्चुअली रेडियो मस्ती रेडियो स्टेशन है ऑफ कोर्स हमारा रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट फॉर बेटी भाविया, आपकी मॉम है प्रतिमा, डैड प्रकाश एंड अ लॉट ऑफ लव फॉर हर, थैंक यू सो मच। हेलो रेडियो मस्ती टीम, गीता सीता बलूराम ऑफ शातु बनारस, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। ये आपने काफ़ी पहले ही हमें मैसेज भेज दिया था, तो चलिए ये अगला गाना गोज आउट स्पेशली आप लोगों के नाम।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: न जाने क्यों दिल को आजकल चैन नहीं आता है, दिल थोड़ा सा बेचैन हो जाता है और किसी अपने को देखने के लिए ये आंखें तरस जाती हैं, और कभी कभी जब वो सामने आ जाता है या फिर सामने आ जाती है तो जुबान पर ताला सा लग जाता है और बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम लेकिन कह नहीं पाते हैं। इन अल्फाजों को कैसे बयां करें, प्यार में तो बहुत कुछ कहना बाकी है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप ऐसे सिचुएशन में फंसे पड़े हैं और यू डोंट नो कि किससे कहें, कैसे कहें, कहां जाएं और किसको कहें, तो ऑफ कोर्स RM2 रेडियो मस्ती है आपके साथ। दिल का हाल सुनने सुनाने के लिए ही हम यहाँ पर आ चुके हैं एंड कुछ प्यार भरी बातों के साथ साथ दिल के जज्बातों को भी हम शेयर कर रही हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर सत्यम, समवन हु लव्स हिम इन मॉरिशस। अगर आप कहते हैं कि आप मॉरिशस में हैं तो इसका मतलब ये है कि सत्य मॉरिशस में नहीं है, सात समुद्र पार है मे बी, एंड लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप थोड़ा मुश्किल होता है एंड इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट है एंड हर किसी की कहानी अपने में बहुत ही अलग होती है एंड उम्मीद करते हैं कि आप अपने रिश्ते को शादी तक ज़रूर पहुंचा पाएं। एंड चलिए बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, प्यार में सबसे ताकतवर तो वही होता है जो प्यार में और प्यार से जीना जानते हैं। चलिए 8:26 रेडियो मस्ती में दिव्या का साथ है, इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर हमारा और आपका साथ रहेगा टिल 9 PM।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: ट्रस्ट मी, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाता है और आपसे हमेशा एंड फॉर एवर वाला प्रॉमिस करता है और ये प्रॉमिस ज़रूर रखता है और इसी को हम सफ़र कहते हैं। और आई जस्ट होप कि ऐसा वाला प्यार आपको ज़रूर मिले। एंड कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपको बेइंतहा बेशुमार प्यार अपनी ज़िंदगी में मिलता रहे। और हमारी तरफ से भी हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं आपको पैम्पर करने के लिए। यस, एक छोटा सा सेगमेंट हम रखते हैं आपके मैसेजेस के लिए, क्योंकि आपके मैसेजेस को हम इंक्लूड ना करें ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम बार बार आपके मैसेजेस की राह देखते हैं और वेट करते रहते हैं, क्योंकि मैसेजेस के ज़रिए ही बहुत सारा प्यार झलकता है। सो वंस अगेन दिल से शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। 8:40 दिव्या का साथ अभी से लेकर रात्रि के 9 तक इन योर इवनिंग लाउंज। चलिए यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है। हाय दिव्या, आई एम प्रिया फ्रॉम इलो पॉम्पलेमुसिस, ट्रस्ट यू फाइन। बिल्कुल ठीक ठाक है जी, थैंक यू सो मच। और आप कहती हैं कि पहली बार मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, तो चलिए प्रिया जी आपका वेलकम है। एंड कहती है कि प्लीज़ बी काइंड एंड प्ले अ ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इंक्लूड्स माई नेम प्रिया, और आपकी पतिदेव है मनोज और आपका क्यूट बेटा है युव। तो चलिए प्रिया जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके नाम मनोज जी के लिए और आपका क्यूट बेटा है युव, इन लोगों के लिए ज़रूर हम गाना चलाएंगे। एंड जितने भी सारे लोग आपको जानते हैं शायद इस वक्त वो भी सुन रहे हैं रेडियो, तो चलिए उनके नाम भी प्यारा सा ये अगला गाना। एंड टू ऑल दोज वर्किंग राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बो कुहाज, आराम से आप काम करते रहिए क्योंकि हम हैं आपके साथ टिल 9 PM। हाँ, मुझे पता है कि वक्त का बहुत ही तकाजा है एंड वक्त काफ़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, नॉन स्टॉप गाने तो चलते रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड फिलहाल के लिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ वी हैव दिस ब्यूटीफुल सिलेक्शन जो आप बहुत ही पसंद करने वाले हैं।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: 8 बजकर 51 मिनट हो चुके हैं एंड चलिए यहाँ पर नॉन स्टॉप सुनील जी के मैसेजेस आज यूजुअल आते जा रहे हैं, एक पे एक मैसेजेस क्या बात है। और आप इस वक्त विदुषी को बहुत ही याद कर रही है एंड चलिए वो लगे हाँ तो उनके लिए अगला गाना। और आप कहते हैं कि रिलेशनशिप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड चलिए आपका रिलेशनशिप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे, हम बिल्कुल आपके लिए बहुत ही खुश हैं। एंड आप कहते हैं कि MBC में जितने भी सारे RJs हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, तो चलिए आप ऐसे ही एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके रखिए विद एवरीवन, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपके मन में प्यार होता है तो सबको प्यार बिखेरना चाहिए। तो सुनील जी थैंक यू सो मच, हमेशा आपसे हमने मुलाकात की है तो हमने आपको देखा एज अ फादर फिगर एंड तो चलिए थैंक यू सो मच कि हमेशा आप के मैसेजेस हम तक आते ही रहते हैं। एंड मुझे लगता है कि अब से आपको बोलना चाहिए कि आपकी 2 बेटियां नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं, क्योंकि इसमें मैं भी शामिल होती हूँ। सो थैंक यू सो मच, हमेशा जब भी आपसे बात हुई है तो बहुत ही अच्छा लगा एंड इट्स बीन इयर्स जब से आपसे मुलाकात हुई है। तो चलिए ऐसे ही आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड फिलहाल के लिए अगला गाना गोज़ आउट स्पेशली फॉर विदुषी एंड रघुबीर फैमिली ऑफ थ्रियोले एंड साथ में आपकी 2 बेटियों के नाम।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: तो चलिए इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुडबाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात कल फॉर यू थर्सडे इवनिंग सेम टाइम 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. शुभ रात्रि एंड बाय बाय.

हाय डियर लिसनर्स, गुड इवनिंग. यस यस, मैं ही हूँ नीतू. आवाज थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं बदले भाई, क्योंकि हम आपका साथ देने के लिए जो आ गए हैं इन योर लेट नाइट ग्रुप्स, वो भी रात्रि के 12 बजे तक. सो व्हाटएवर यू माइट बी, स्टे वेल.

नो, जितनी खुशी हमको मिलती है आपसे मिलकर, आई रियली होप आपको भी उतनी ही खुशी मिलती है इन गानों के साथ। वैसे खुशी क्या है, कभी आपने सोचा है, या फिर बस ऐसे ही खुश हो जाते हैं? क्या खुशी सिर्फ तब मिलती है जब हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो? शायद नहीं। खुशी तो वो एहसास है, एक नज़रिया है, एक छोटी सी मुस्कान है जो बिना किसी वजह के भी चेहरे पर आ सकती है। कभी माँ की आवाज़ में खुशी मिलती है, कभी बच्चे की हंसी में, कभी पुराने दोस्त के एक फ़ोन कॉल में, और कभी अपने पसंदीदा गाने की एक धुन में, जैसे कि आज की रात। वैसे ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन हर मोड़ पर खुशी की कोई ना कोई छोटी सी वजह ज़रूर छोड़ जाती है, बस ज़रूरत है उससे पहचानने की। तो आज खुशी को कल पर मत छोड़िए, आज मुस्कुराइए, आज जीए और आज के खूबसूरत

कभी-कभी हम बड़ी खुशियों की तलाश में इतने बिजी हो जाते हैं कि छोटी-छोटी खुशियों को देखना भी भूल जाते हैं। सुबह की पहली चाय, खिड़की से आती ठंडी हवा, किसी अपने का प्यार से हाल पूछना, फेवरेट गाना रेडियो पर बजना, पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराना, ये सब खुशियां ही तो हैं। खुशी हमेशा महंगी चीजों में नहीं होती, खुशी तो उन पलों में होती है जो दिल को सुकून दे जाए। That's why, जिंदगी को बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए, इन छोटे छोटे पलों को अपना बनाइए, क्योंकि अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छोटी सी वजह लेकर हमारे सामने खड़ी होती है।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें।

कहते हैं ना, खुशी एक ऐसी दौलत है जो बांटने से कम नहीं बल्कि और बढ़ती है। किसी उदास इंसान को एक मुस्कान दे दीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, किसी अपने को बिना किसी वजह के फोन करके कह दीजिए, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मानिएगा जरूर, सामने वाले के चेहरे पर जो खुशी आपके दिल को भी रोशन कर देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश होने के लिए हमें कुछ हासिल करना पड़ेगा, लेकिन कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला कर देखिए, उसमें जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज से कम नहीं होगा। तो आज एक फैसला लीजिए, खुशी सिर्फ पानी नहीं है जो पीनी है, खुशी एक रोशनी है जो दूसरों तक पहुँचानी है।

दोस्त, म्यूजिक और खुशी का रिश्ता भी कितना अजीब और खूबसूरत है। कभी एक पुराना गाना हमें बचपन की यादों में ले जाता है, कभी रोमांटिक मेलोडी चेहरे पर मुस्कान दे जाती है, और कभी कोई एनर्जेटिक बीट हमें झूमने पर मजबूर कर देती है। म्यूजिक दिल की वो जुबान है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है। जब दिल उदास हो एक अच्छा सा गाना सुनिए, जब दिल खुश हो अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ गुनगुनाइए, और जब जिंदगी बहुत बिजी हो तो कुछ पल म्यूजिक के नाम कर दीजिए।

थैंक यू सो मच इस म्यूजिकल राइड में हमारे हम सफर बनने के लिए। वैसे हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते, जिम्मेदारियों और फर्जों को निभाते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब के बीच हम खुद को ही भूल जाते हैं, इजंट इट? याद रखिए, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना सेल्फिश होना नहीं है। अपनी पसंद का गाना सुनना, अपनी फेवरेट चाय खाना पीना, थोड़ा अकेले बैठिए, पुरानी यादों को याद कीजिए या बस बिना किसी वजह के मुस्कुरा दीजिए, आपका दिल भी आपकी तवज्जो का हकदार है दोस्त।

बात, एक मुस्कान कितनी छोटी सी चीज है ना, लेकिन कभी सोचना कि एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है। आपकी एक स्माइल किसी परेशान इंसान को उम्मीद दे सकती है, किसी उदास दिल को हल्का कर सकती है और किसी अनजान शख्स को भी अपनापन महसूस करा सकती है। वैसे मुस्कुराने के लिए हमेशा परफेक्ट सिचुएशन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मुश्किलों के बीच मुस्कुराना ही जिंदगी के प्रति सबसे खूबसूरत जवाब होता है।

अभी जिंदगी की बात चल पड़ी है इन गानों के बीचों बीच, तो जिंदगी का एक सच ये भी है कि हम अक्सर गुजरे हुए कल को बदलने की कोशिश करते हैं और आने वाले कल की फिक्र करते हैं, लेकिन जो पल हमारे पास सच में है वो है आज। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, कल जो होगा उसका हमें पूरा पता भी नहीं है, तो क्यों ना आज पूरी तरह से जिया जाए। आज अपनों के साथ वक्त बिताइए, हम तो हैं ही, नहीं तो आपके साथ हैं। तो दिल खोल कर हंसिए, आज अपना फेवरेट गाना सुनिए और आज की खुशी को महसूस कीजिए।

0: लवली गाना
1: वैसे हर दिन एक जैसा नहीं होता है कभी दिन बहुत अच्छा होता है कभी मुश्किलें सामने आती हैं लेकिन हर सिचुएशन में हम अपना नजरिया जरूर चुन सकते हैं खुशी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी खुशी का मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद उम्मीद को जिंदा रखना गिरने के बाद उठना हारने के बाद फिर से कोशिश करना और आंसुओं के बाद फिर से मुस्कुराना ये भी खुशी की तरफ एक कदम है सो पॉजिटिव सोचिए अच्छे लोगों के साथ रहिए अच्छी बातें सुनिए और अपने अंदर की रोशनी को जिंदा रखिए

कुछ लोग समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, शायद। वैसे जिंदगी में पैसा, शोहरत, कामयाबी अपनी जगह है, लेकिन जब दिल खुश होता है तो अक्सर याद आते हैं अपने लोग। माँ की डांट, पापा की फिक्र, भाई बहन की नोकझोंक, दोस्तों की मस्ती और किसी खास शख्स की एक प्यारी सी बात, यही तो जिंदगी की असली दौलत है। वक्त गुजरता जाता है और हम अक्सर कहते हैं कभी फुर्सत में मिलेंगे। दोस्त, फुर्सत का इंतजार मत करें, आज ही किसी अपने को फोन करें। यस, यू हैव टाइम। आज ही कह दीजिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि रिश्तों से मिली खुशी को किसी कैलेंडर की जरूरत नहीं होती, वो बस एक पल में ही दिल को भर देती है।

आई रियली होप कि इन गानों के जरिए थोड़ी सी बहुत सारी खुशियां आप तक पहुंचा रही हैं, और कभी कभी खुशी पाने के लिए हमें कुछ नया पाने की नहीं बल्कि जो हमारे पास है उसकी कदर करने की जरूरत है, मानेंगे ना। सुबह आँख खुलना, सेहतमंद होकर एक नई सुबह देखना, अपनों की आवाज़ सुनना, अपने सपनों के लिए एक और दिन मिलना, ये सब की किसी तोहफे से कम नहीं। जब हम शुक्र करना सीख जाते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है।

इसलिए आज थोड़ी देर रुककर अपनी जिंदगी को देखिए और उन चीजों के लिए शुक्र कीजिए जो आपके पास है। शायद आपको महसूस हो कि खुशी आपके पास पहले से ही बहुत थी, बस आपका ध्यान नहीं था।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: I don't know what it is.

जाने से पहले बस इतना कहना है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्त, बस इसे महसूस करने का हुनर चाहिए। हर दिन में एक वजह ढूंढिए मुस्कुराने की, हर रिश्ते में प्यार ढूंढिए, हर मुश्किल में एक सीख ढूंढिए और हर सुबह में एक नई उम्मीद। अपने दिल को नफरत, गिले शिकवे और बेकार की फिक्रों से हल्का रखिए। जो लोग आपको खुशी देते हैं उन्हें संभाल कर रखिए और जहां मुमकिन हो दूसरों की जिंदगी में भी खुशी बांटिए, क्योंकि दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी पॉजिटिविटी और बहुत सारी मुस्कुराहटों की। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। म्यूजिक के साथ जिंदगी का ये खूबसूरत सफर जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: होगा,
1: मेले में ले जाना होगा,
0: खाना भी पकाना होगा,
1: झुमका दिलाना होगा,
0: झाड़ू भी लगाना होगा,
1: नखरे उठाना होगा।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।